ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर। आज शुक्रवार है, सक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 15वीं तिथि तदनुसार 5 जून 2026। इस समय सुबह के 5:57 होने को है। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सवेरे की 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा।
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास

0: प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका यह कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 6:05 हो रहे हैं। आइए सुने श्री रामचरितमानस। आज आप सुनेंगे एपिसोड संख्या 17। मुख्य गायक स्वर है श्रीकांत परगुनकर के और संगीत संयोजन सतीश भाटिया का।

श्री राम भक्त ऐसा मानते हैं कि चैत्र मास की नवमी तिथि को सभी तीर्थ अयोध्या चले आते हैं। श्रद्धालु जन पवित्र सरयू में स्नान करते हैं। इस पवित्र नदी के दर्शन, स्पर्श और जल के पान से सभी पाप मिट जाते हैं। श्री राम की नगरी अयोध्यापुरी मोक्षदायिनी है। श्रद्धा की इसी भावना से गोस्वामी तुलसीदास ने श्री राम की निर्मल कथा के लेखन का आरंभ यहां किया। रामचरितमानस को सुनने मात्र से अपूर्व शांति मिलती है। विषय वासना की आग में जलता मन रूपी हाथी यदि इस मानस रूपी सरोवर की शरण आ जाए तो उसे अनंत सुख की प्राप्ति होगी। ऋषि मुनियों के प्रिय इस मानस रूपी कथा की रचना देवाधिदेव महादेव ने की थी। सो अवसर आने पर मन में रची ये कथा उन्होंने देवी पार्वती को सुनाई। उसी सुखदायिनी कथा का वर्णन तुलसीदास ने

चरित मानस में किया है। भगवान शंकर की कृपा से उनमें सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप वो एक समर्थ तथा श्रेय कवि कहलाने के अधिकारी हुए।

अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज़ पर। सवेरे की 6:15 हो रहे हैं। सुविचार। जितना मन परमात्मा में लगता है उतना ही व्यर्थ विचारों से मुक्त होकर सुख पाता है। इस सुविचार के बाद आइए सुने भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

भक्ति और प्रेम से मनुष्य निस्वार्थी बन सकता है। मनुष्य के मन में जब किसी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, तब उसी अनुपात में स्वार्थपरता घट जाती है। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

इस भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर। सवेरे के 6:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का पहला गीत सुनिए श्रोताओं, फिल्म एक नज़र से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी की। गीत के बोल मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

फिल्म संगीत का अगला गीत सुनिए श्रोताओं, फिल्म सितमगढ़ से, आवाज़ें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की, गीत के बोल मजरू के और संगीत है राहुल देव बर्मन का।

फिल्म संगीत का आखिरी गीत सुने श्रोताओं फिल्म बेमिसाल से। आवाज़ है लता मंगेशकर की, गीत के बोल आनंद बख्शी के, संगीत आर डी बर्मन का।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर। सवेरे के 7 बज रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

जिंदगी कांटों का सफर है, हौसले इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, पर जो रास्ते बनाए वो इंसान है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में। जिनमें बातें आपकी और हमारी और साथ होगा खूबसूरत से नगमों का। तो चलिए आगाज करते हैं कार्यक्रम का इस पहले गीत के साथ।

या दोस्तों, कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में आज हम बात अगर हमारे आज के दिन की करें तो जी हाँ, आज का दिन अपना विशेष महत्व रखता है, हम सभी के जीवन से जुड़ा है, कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। जी हाँ, हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हमारा पर्यावरण। दोस्तों, हर साल 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस दिन का महत्व हम सभी जानते हैं कि हम सभी के जीवन से ये हर तरह से जुड़ा हुआ है। यह दिन लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रति जागरूक करने और पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित करने का एक वैश्विक अभियान है। दोस्तों, बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जंगलों की कटाई और प्लास्टिक कचरे जैसी कई सारी चुनौतियों के बीच इस दिवस का विशेष महत्व रहता है। इसके अगर हम थीम की बात करें 2026 में इसकी दिवस को मनाने की थीम जो है वो है प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए। और अगर इस दिवस के तरफ हम बात करें तो हम सभी की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है हमारे पर्यावरण की तरफ। बातें होंगी इसी की तरफ और भी। फिलहाल के लिए ये म्यूजिकल ब्रेक।

दोस्तों, स्वच्छ पर्यावरण के बिना स्वस्थ मानव जीवन की कल्पना करना लगभग नामुमकिन है। जी हाँ, पर्यावरण जिससे हर कोई कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से हर तरह से जुड़ा हुआ है, हर तरह से प्रभावित भी होता है, तो इसकी तरफ हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। और बात आज विश्व पर्यावरण दिवस की करें तो इस दिवस की शुरुआत जो है वो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर वैश्विक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से की गई थी। और आज ये दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरणीय अभियानों में से एक बन चुका है। इसमें 150 से अधिक देशों के लोग भाग लेते हैं। हर साल नई थीम और नए मेज़बान देश के साथ यह दिवस मनाया जाता है ताकि किसी विशेष पर्यावरणीय समस्या पर वैश्विक ध्यान जो है वो केंद्रित किया जा सकता है। साल 2026 में भी विश्व पर्यावरण दिवस एक महत्वपूर्ण संदेश के साथ मनाया जा रहा है और इस बार जो है फोकस प्लास्टिक प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या पर है जो समुद्र, नदियां, वन्यजीव और मानव स्वास्थ्य तक को प्रभावित कर रही है।

दोस्तों, बात आज हम हमारे पर्यावरण की कर रहे हैं, तो जहाँ बात हम पर्यावरण को अपना मानते हैं, तो हमारी भी हर तरह से ये जिम्मेदारी बन जाती है कि कुछ न कुछ प्रयास हम भी हमारे प्रकृति की तरफ करें। जी हाँ, ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं होती, हम सभी के जो छोटे छोटे प्रयास हैं वो एक बड़े बदलाव में तब्दील हो जाते हैं। जी हाँ, प्रकृति की तरफ हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है और इसी जिम्मेदारी के लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी बहुत मायने रखते हैं। और बात उन प्रयासों की करें तो जी हाँ, जैसे आज सुबह की ही बारिश की बात करें तो जी हाँ, बारिश की बूंदें जो हैं उनकी आवाज़ को प्रकृति के संगीत की तरह समझिए। लेकिन यह सिर्फ सुकून देने वाली आवाज़ नहीं बल्कि आपके घर के लिए संसाधनों की बचत करने वाली धुन भी बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, एक प्रयास हम पानी बचा कर कर भी कर सकते हैं, पानी को व्यर्थ नहीं बहा कर भी कर सकते हैं। जहाँ हो सके बारिश का पानी भी इकट्ठा करने की शुरुआत कर सकते हैं। और ये समझने के लिए भी होती है कि आपको सबसे पहले एक संग्रहण जो है वो करना चाहिए जिससे इस पानी का आप सदुपयोग कर सके। इन्हीं छोटे छोटे प्रयासों की तरफ बातें और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये म्यूजिकल ब्रेक।

दोस्तों, पर्यावरण बचाने के लिए जो है अपने दैनिक जीवन में छोटे से बदलाव कर हम एक पर्यावरण की तरफ अपना सहयोग दे सकते हैं। जी हाँ, और उन्हीं छोटे से प्रयास में एक प्रयास ये भी हो सकता है कि हम जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक से बचें। जी हाँ, पॉलीथीन की जगह हमेशा कपड़े या फिर जूट से बने थैलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही प्लास्टिक की बोतलों के बजाय स्टील या कांच की बोतलों का उपयोग हम कर सकते हैं। पर्यावरण को सबसे ज़्यादा क्षति जो है आज के दौर में जो प्लास्टिक की वजह से हो रही है, तो हम जो एक शुरुआत अपने से कर सकते हैं कि हम प्लास्टिक का बिल्कुल कम से कम उपयोग करें, साथ ही साथ पानी और बिजली को भी बचाएं। जी हाँ, जब हमें कोई उपयोग ना हो उस समय हम जो है बिजली को और पानी को कम यूज़ करें। जब कमरे में कोई ना हो तो पंखे लाइट जो है वो ऑफ कर सकते हैं। साथ ही साथ पारंपरिक बल्ब की जगह हम एलईडी बल्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रश करते समय या बर्तन धोते समय नल को खुला ना छोड़ें, बेवजह पानी को ना बहाएं।

दोस्तों, पर्यावरण हर व्यक्ति को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। जी हाँ, बढ़ते प्रदूषण, घटते पेड़ पौधे और इसी की तरफ हर व्यक्ति प्रभावित सीधे तौर पर होता है। कई तरह की बीमारियाँ, कई तरह के रोग, कई तरह की एलर्जी से हर कोई व्यक्ति प्रभावित होता है। और ऐसे में स्वयं की तरफ से किया गया एक छोटा सा प्रयास भी प्रकृति की तरफ एक हमारा सहयोग बन जाता है। उसी प्रयासों में खुद की तरफ से एक आम व्यक्ति क्या कर सकता है? जी हाँ, भोजन की बर्बादी कम कर सकता है। जी हाँ, भोजन की योजना बनाएं, बचे हुए भोजन को ठीक से संग्रहित करें और जैविक कचरे की जो है वो खाद बना सकते हैं, ताकि भोजन की बर्बादी को कम किया जा सके और लैंडफिल से मीथेन उत्सर्जन को भी कम किया जा सकता है। साथ ही हमारी भावी पीढ़ी को भी हम एक तरीके से प्रकृति की तरफ सहयोग दे सकते हैं कि कागज़ की बर्बादी जो है वो कम करें। जी हाँ, डिजिटल संचार को प्राथमिकता दें, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज और हस्ताक्षरों का उपयोग करें और कागज़ की खपत और वनों की कटाई को कम करने के लिए केवल तभी प्रिंट करें जब आवश्यक हो।

दोस्तों, प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है और उसके बदले में हम प्रकृति को क्या दे सकते हैं? जी हाँ, हम दे सकते हैं प्रेम। और प्रेम के तौर पर आप लगा सकते हैं हर साल एक पौधा। और न सिर्फ लगाना है बल्कि उसकी देखभाल भी करनी है। जी हाँ, प्रकृति की तरफ एक बड़ा सहयोग हर व्यक्ति कर सकता है। अपनी ओर से एक पौधा लगाकर, हम जो है पेड़ लगाकर वायु की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, मिट्टी के कटाव से निपटने, जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए और वृक्षारोपण पहलों में भाग ले सकते हैं। साथ ही हमारी भावी पीढ़ी को भी हमें पर्यावरण से जोड़ना ज़रूर चाहिए। इसके लिए पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, साथ ही साथ उन्हें जो है प्रकृति से जोड़ने के लिए बाग बगीचों में ले जाया जाए, उन्हें हर तरह से प्रकृति की तरफ एक कदम उठाने के लिए प्रेरित भी किया जा सकता है।

और इन्हीं बातों और गीतों के साथ दोस्तों आज का सफर यहीं खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में नई बातें और नए गीतों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार प्रभात, उसके बाद मॉर्निंग न्यूज़ रिले किए जाएंगे।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 24 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज पीसीपीआईआर और सरिगाम जीआईडीसी में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए

0: आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
1: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
1: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
4: खुदरा मुद्रास्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस सेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसा।
3: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सहविकास और

0: सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को पांचवी पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत यह दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
2: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के दूसरे स्तर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
3: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया।

0: है किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा न हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है। सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे, लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasan Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and constitutional expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says US pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to take on arch rivals Pakistan in semi-final of men's under 18 Asia Cup hockey tournament in Japan today. Prime Minister Narendra Modi will visit Surat in Gujarat today to launch multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in road, power and industrial sectors. Mr. Modi will first visit Hazira and will review the ongoing industrial and infrastructure projects before addressing a large public gathering in the afternoon. Later in the evening, the Prime Minister is scheduled to visit Daman to inaugurate and lay the foundation stones for various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. A report from our correspondent.
3: In a major boost to regional infrastructure, Prime Minister Narendra Modi will dedicate key packages of 8-lane Vadodara-Mumbai Expressway to the nation today, significantly enhancing connectivity between Gujarat and Maharashtra. The Prime Minister will also lay the foundation stone for the 4-laning of critical sections of National Highway 56 to improve access to tribal regions and Statue of Unity. Catering to public welfare, the Prime Minister will also inaugurate a modern 200-bedded ESIC hospital in Surat, equipped with round-the-clock emergency and trauma care. In addition to this, several critical utility and industrial infrastructure projects will also be launched today, including the transmission network expansion in Gujarat, advanced effluent disposal system at Dahej, and Sarigam GIDC modern power distribution upgrades in Valsad. Aparna Khund, Akashwani News, Ahmedabad.
2: Prime Minister Modi has called upon athletes participating in World Yogasan Championship to become global ambassadors of the Ayush Ministry's Yog 365 campaign when they return to their home countries. Speaking at the opening ceremony of the championship in Ahmedabad, Mr. Modi said the Ministry of Ayush has launched the Yog 365 campaign to encourage year-round engagement with yoga and promote healthier lifestyles across communities.
4: भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने योगा 365 अभियान शुरू किया है। मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी

0: नमस्ते आदाब दोस्तों, आप सभी प्रिय श्रोताओं का स्वागत है आप ही के अपने फेवरेट मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में।
1: आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र पर जो प्रोग्राम इस वक्त ट्यून्ड है आप सभी के रेडियो सेट पर, उसका नाम है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार।
0: बिल्कुल श्रोताओं, आज एक नया दिन, नए दिन की नई सुबह और नई सुबह के साथ नई ऊर्जा के साथ स्वागत है आप सभी का। आप जुड़िए हमसे क्योंकि आज प्रोग्राम में बहुत सी बातें और बेहतरीन से गीत सुनवाए जाएंगे आपको।
1: आज का खास दिन प्रकृति के नाम, बहुत सारी बातें होंगी प्रकृति से जुड़ी हुई। प्रकृति किस तरह से हमारे जीवन का श्रृंगार बन जाती है, हमारे जीवन का आधार बन जाती है, और भी होंगी तमाम बातें खूबसूरत नए नवेले गीतों के साथ। लेकिन ये सब बातें आप तक पहुंचा रही है जो नमस्कार की क्रिएटिव टीम, उसका परिचय आपसे करवा देते हैं। पहले
0: तो श्रोताओं, ट्रांसमीटर से है कैलाश चंद्र सोलंकी और सीएल सोनी।
1: तकनीकी सहयोग के लिए इस वक्त कंट्रोल रूम में मौजूद हैं इंजीनियर प्रवीण कुमार।
0: अनाउंसर ऑन ड्यूटी हमारे साथ है आकांक्षा वैष्णव और एफएम चैनल पर है कल्याण विश्नोई।
1: नमस्कार कार्यक्रम का संयोजन और प्रस्तुति है राजेश रामलोट की।
0: और इन सभी के साथ मैं सोफिया
1: और मैं स्वाति। आज के नमस्कार में है आपके हम सफर, बहुत सारी बातें, बहुत सारे गीत, और कार्यक्रम का आगाज इस खूबसूरत से गीत के साथ जो कि है फिल्म जब हैरी मेट सेजल से, और ले जाएंगे आपको जाने कहां हवाएं।

0: ट्यून्ड है इस वक्त मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार के साथ। ये जो खूबसूरत गीत हवाएं आपने सुना, और ये हवाएं जो हैं वैसे अभी हमारे राजस्थान में तो इन हवाओं का एक अलग ही परचम लहरा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले जो घनघोर आंधी आई थी और उसने पूरे इस मौसम का मिजाज ही बदल दिया था, उसके बाद भी हवाएं तेज ही हैं। हालांकि एक तरफ तो अच्छा लगता है कि टेम्परेचर डाउन हो जाता है ना सोफिया,
1: बिल्कुल
0: थोड़ी गर्मी से राहत
1: मिलती है जून के महीने में।
0: हाँ, जून के महीने में, लेकिन इन हवाओं के कारण

0: एक मुश्किल ये भी आती है कि इधर हम घर की सफाई करते हैं, इधर तेज हवाएं हैं, धूल मिट्टी आ रही है, तो घर भी थोड़ा गंदा हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम रेगिस्तान के बाशिंदे हैं, धूल से तो हमें एलर्जी होती नहीं है एक तरह से। लेकिन एक बात सोचने लायक है कि ये कभी कभी जो अचानक से ये आंधी तूफान आ जाते हैं, या कभी एकदम तेज गर्मी है, अचानक से मौसम में परिवर्तन होता है, मौसम विशेषज्ञ कहते हैं कि ये अल निनो का प्रभाव है। और ये अल निनो का प्रभाव इसलिए है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग इसलिए है क्योंकि हमने ही तो अपने इस जलवायु का जो ये चक्र हुआ करता था, बहुत सामान्य रूप से चला करता था, उसको हमने अपने ही क्रियाकलापों से बिगाड़ दिया है। प्रदूषण जो हम फैला रहे हैं, प्लास्टिक का कचरा फैला रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सब इसके लिए जिम्मेदार तो है ही।
1: बिल्कुल स्वाति, ये जिम्मेदार हैं, हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम जो है प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर नहीं चलते हैं, और
0: हाँ
1: इसीलिए जलवायु संकट जो है वो दिन ब दिन उभर रहा है, और साल भर साल जो है इसकी जो स्थिति है वो बदतर होती जा रही है।
0: हाँ
1: प्रयास बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस दिन पे तो बहुत सारी बातें कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही आगे आगे जीवन बढ़ता है तो सारी
0: बिल्कुल
1: चीज़ें जो है हम भूलते जाते हैं।
0: बिल्कुल। लेकिन हम अपनी शायद भारतीय संस्कृति को भी
1: संस्कृति
0: भूल रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: जहां पर हम पृथ्वी को, इस वसुंधरा को हम अपनी माँ के समान मानते थे।
1: बिल्कुल वृक्षों की जो है पूजा की जाती है,
0: बिल्कुल
1: और ये संस्कृति हमारी सिखाती है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के लिए सिर्फ जो रोज़ की आदतें हैं उसमें हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, हमारी संस्कृति जो है वो भी हमें यही सिखाती है।
0: बिल्कुल सोफिया, तो हम और तुम तो आज संकल्प ले ही लेते हैं कि आज से ही हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जो भी हमसे छोटे छोटे सार्थक प्रयास हो सकेंगे वो जरूर करेंगे। कैसे होंगे वो प्रयास वो भी जानेंगे इस खूबसूरत से गीत के बाद, जो कि है जावेद अली की आवाज़ में, नाफरमानिया।

0: मिशन प्रोग्राम नमस्कार इस वक्त ट्यून्ड है आप सभी के रेडियो सेट पर आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र पर। ये जो खूबसूरत गीत अभी आपने सुना ना फरमानिया, इसमें जावेद अली का साथ दिया था श्रेया घोषाल ने। लेकिन जब ना फरमानियों की बात आती है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी ना फरमानियाँ कर रहे हैं? जो प्रकृति हमें खूबसूरती का संदेश दे रही है, शांति का संदेश दे रही है, और वहीं जीवन का जो मधुर संगीत है वो भी तो हमें प्रकृति के हर एक जो तत्व है उसमें सुनाई देता है, समझ में आता है, उसका एहसास भी हमें पता चलता है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हैं उसमें हम इन सब एलिमेंट्स को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं? जैसे सपोज आप कहीं पर भी किसी फंक्शन में गए हैं, वहाँ आप डिस्पोजेबल ग्लासेस का प्रयोग कर रहे हैं। आपने एक घूंट पानी पिया, एक ग्लास का प्रयोग किया, थोड़ी देर में, अभी गर्मी है पानी भी ज़्यादा पीना होता है, फिर थोड़ी देर में दूसरा घूंट पानी पीने के लिए फिर नई ग्लास उठाई। आप सोचिए ना, ऐसे अगर आपने 10 बार पानी पिया है, 10 ग्लासें आपने, अगर प्लास्टिक की डिस्पोजेबल ग्लासें आपने कचरे में डाली हैं, तो सोचिए प्रकृति पर कितना भार बढ़ा दिया है। तो फिर क्या कर सकते हैं?
1: बिल्कुल, भार तो बढ़ा है और हम ही ने बढ़ाया है। और जो अभी की जो स्थिति है उसमें जो ये सिंगल यूज़ वाला जो चीज़ हाँ। है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। ये आसानी तो है हमारे लिए, लेकिन ये पर्यावरण के लिए उतनी ही खतरनाक हो रही है। और सिंगल यूज़ हमारी ज़िंदगी बेहद आसान बनाता है, लेकिन इन्वायरमेंट के लिए ख़राब है। और आसानी से ये जो चीज़ें हैं, प्लास्टिक हैं, वो नालों को जो है वो जाम कर देती है। और अभी बारिश आने वाली है तो फिर क्या स्थिति होगी, ये हम और आप अंदाजा लगा ही सकते हैं।
0: अरे तुमने तो मतलब ऐसी मेरी कल्पना में ये ला दिया है दृश्य कि अगर ये बरसाती नाले और बारिश आने पर जो उफनते हुए ये सारा गंदगी के साथ कचरा और पानी सड़कों पर फैल गया, सोचे ना हम ही तो परेशान हो रहे हैं ना।
1: हम ही परेशान हो रहे हैं और वजह भी हम ही हैं, क्योंकि हाँ। अगर हम ध्यान रखेंगे इन चीजों का तो जो आने वाली चीजें, खराब चीजें हो रही है उन पर हम थोड़ा काम कर सकते हैं। अगर हम पहले काम करें तो जो चीजें आ रही है, खराब हो रही है, वो बेहतर होगी, खराब नहीं होगी।
0: सोफिया, मैं तो एक काम आजकल किया करती हूँ कि जब भी सपोज किसी फंक्शन में जाना है या कहीं पर भी, अपने साथ घर से ही एक स्टील की बोतल कैरी कर लेती हूँ पानी भर के। अगर वहाँ पानी की व्यवस्था है तो अपनी ही बोतल भरती हूँ। क्यों सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो यूज करके प्रकृति पर भार

0: डालना। और ऐसा नहीं है, बैग्स पर्स हम सबके पास होते हैं, एक छोटी बॉटल कैरी करने में कोई नुकसान नहीं है। और एक पतला कपड़े का थैला, जैसे हम
1: बिल्कुल
0: मोबाइल कैरी करते हैं, मोबाइल के वजन से तो 10 गुना कम वजन होता है एक पतले कपड़े के थैले का। और आजकल तो ये इतनी अच्छे तरीके के मिलते भी हैं कि इनको कैरी करना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगर हम अपने साथ अपने पॉकेट में या पर्स में इस तरह का कपड़े का थैला, या अगर आप 2 व्हीलर यूज कर रहे हैं तो गाड़ी की डिक्की में अपने कपड़े का थैला रख दिया, तो न तो आपको भार उठाना पड़ेगा, लेकिन प्रकृति के प्रति ये एक आपका छोटा सा योगदान प्रकृति को बहुत खूबसूरत बना देगा। तो सोफिया, आज तुम्हारी गाड़ी की डिक्की में भी एक थैला मैं रखने वाली हूँ।
1: बिल्कुल
0: तो प्रकृति के साथ भी हम इस खूबसूरती को साझा करें, उसके संवर्धन में अपना सहयोग करें। इसी की आशा के साथ ये खूबसूरत सा गीत आपके नाम, जो कि है विशाल मिश्रा की आवाज में।

अपनी सूरत देख के नज़रें हटाना मुश्किल है। बिल्कुल, विशाल मिश्रा के साथ दिया इस खूबसूरत के से गीत में हंसिका पारेख ने। और नज़रें अगर प्रकृति की खूबसूरती पर टिक जाए

0: भी नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है ना सुफिया?
1: बिल्कुल, नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि प्रकृति हमें इतने अच्छे अच्छे तोहफे जो देती है अपनी चीज़ों से, तो उनसे जुड़ना हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसकी जो देखभाल या ध्यान की बात आती है वो बहुत मुश्किल है।
0: हाँ, और हमने इस मुश्किल काम को और ज्यादा मुश्किल कर दिया है, क्योंकि चाहे जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट है, अगर हम उसका सही ढंग से निस्तारण नहीं कर रहे हैं, हमारे जो व्हीकल इतने दौड़ रहे हैं, गाड़ियाँ, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ये थ्री व्हीलर, जितने भी दौड़ रहे हैं, अगर हमने उनका ढंग से पॉल्यूशन चेक नहीं करवाया है और वो अगर धुआं छोड़ रहे हैं, तो क्या ये प्रकृति के प्रति हम अपराध नहीं कर रहे हैं?
1: बिल्कुल, इसका एक उपाय ये भी हो सकता है कि जो वाहनों के प्रति हमारी जो निर्भरता है वो थोड़ी कम हो।
0: हाँ, अगर आसपास ही कहीं सब्जी लेने जाना है या थोड़ा सा दूर
1: तो
0: जाना
1: हम
0: है,
1: थोड़ा सा पैदल चल ले तो ये कितना फायदेमंद होगा।
0: हाँ,
1: हमारी सेहत के लिए भी
0: सेहत
1: होगा
0: के
1: और
0: लिए भी,
1: पर्यावरण के लिए तो अपने आप ही होगा, क्योंकि पेट्रोल पर जितनी निर्भरता कम होगी उतना ही पर्यावरण दूषित नहीं होगा।
0: बिल्कुल। तो आजकल उसके लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन है ईवी वाले व्हीकल,
1: बिल्कुल,
0: और इसके साथ ही अगर हम अपने दैनिक जीवन में भी सौर ऊर्जा पे और पवन ऊर्जा पे निर्भरता रखें थोड़ी सी, तो फिर जो काम है वो आसान भी हो जाएगा। मुझे याद आ रहा है कि मेरे यहाँ पर पिछले लगभग लगभग 40 से 42 साल हो गए हैं सोलर कुकर का प्रयोग होता है, और हमारी जोधपुर जो सन सिटी है, सोचिए सोलर कुकर का हम बहुत आसानी से उपयोग कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर दिन भर धूप आती है आपके घर में, तो आप बहुत आसानी से और लगभग न्यूनतम खर्च है, मतलब बहुत जीरो मेंटेनेंस प्रोडक्ट है ये, और अगर इस पे थोड़ा भी हम खाना अपना शिफ्ट कर सकें, जैसे सूजी सीखना है, बहुत
1: बिल्कुल
0: एक महिलाओं के लिए घर में रोजमर्रा की चीज़ है सूजी, तो बहुत आसानी से बहुत अच्छे से हो जाता है। या आलू उबालने हो, टमाटर उबालने हो, सूप बनाना हो, सर्दियों में अगर आपको खाना गर्म रखना है, बना दिया आपने और उसके बाद गर्म रखना है, इन सब के लिए बहुत अच्छे से सोलर कुकर का प्रयोग हो
1: बिल्कुल,
0: सकता है।
1: ये गृहिणियों के लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि अचानक से अगर गैस खत्म हो गया तो थोड़ी चीजें जो है उस पे यूज हो सकती
0: यूज
1: है।
0: हो सकती है, यानी निर्भरता हम कम
1: बिल्कुल
0: कर सकते हैं। तो बस प्रकृति की खूबसूरती बनाए रखें और इस खूबसूरत से गीत को हम उसका आनंद लें जो हमें प्रकृति के रंग में ही रंग देगा, ओ रंगरेज़।

0: श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में बजने वाले हैं सुबह के 9। हम एक न्यूज ब्रेक के लिए रुकेंगे और फिर से लौटेंगे नमस्कार कार्यक्रम में ठीक 9:10 पर।
1: ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। सवेरे के 9 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
2: सुनेंगे

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। विश्व पर्यावरण दिवस आज, प्रदेश भर में सघन वृक्षारोपण के लिए हरियालो राजस्थान अभियान 2026 शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग को अपनाने पर जोर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। पीएम सूर्य घर योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राजस्थान को 6 पुरस्कार मिले और प्रदेश में नए परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से कई स्थानों पर आंधी और बारिश। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर जीवन को बचाने के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत ये दिवस वर्ष 1973 से हर साल 5 जून को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य के सिद्धांत से प्रेरित होकर हम सभी मिशन लाइफ की भावना से काम करते रहेंगे, साथ ही हमारी पृथ्वी को स्वच्छ और हरित बनाए रखने में अपना योगदान देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी प्रदेशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने सभी से प्रकृति संरक्षण, जल संवर्धन, वृक्षारोपण और पर्यावरण संतुलन के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध पर्यावरण के निर्माण में सहभागी बनने का आह्वान किया है। इस अवसर पर प्रदेश में आज से हरियालो राजस्थान 2026 अभियान शुरू होगा। राज्य स्तरीय अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर स्थित विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में पौधा रोप कर करेंगे। इसके साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान की भी शुरुआत होगी। अभियान का उद्देश्य नागरिकों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना है। अभियान के दौरान इस मॉनसून सीजन में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पर्यावरण दिवस पर समारोह रखा गया है। इसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। प्रदेश में गंगा दशमी से शुरू हुए 15 दिन के वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का भी आज समापन हो रहा है। अभियान के तहत आज जिला स्तरीय समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान जल संरक्षण और जन भागीदारी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले भामाशाहों, संस्थाओं, पंचायतों, नगर निकायों और जल योद्धाओं को जल गौरव सम्मान दिए जाएंगे। अजमेर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बूढ़ा पुष्कर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। इस कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे। हमारे करौली संवाददाता ने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान के तहत जन भागीदारी से जल संरक्षण से जुड़े कई कार्य किए गए।
1: जिले भर में अभियान के दौरान जल संरक्षण और जन भागीदारी की कई प्रेरक सफलताएं सामने आई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों की सफाई, जल संग्रहण संरचनाओं के पुनर्जीवन और पौधरोपण गतिविधियों में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज समापन अवसर

0: पर जल संरक्षण कार्यों का अवलोकन, तुलसी पौध वितरण, हरियाणा राजस्थान अभियान की तैयारियां तथा जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान ने जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बांके बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरूआत की। प्रधानमंत्री ने विश्वभर के खिलाड़ियों से चैंपियनशिप के बाद भी लोगों को योग के प्रति जागरूक करते रहने का आग्रह किया।
2: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
1: 8 जून तक चलने वाली इस योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति समिति के निर्णयों की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। गौरतलब है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। पीएम सूर्यघर योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राजस्थान को अलग अलग श्रेणियों में 6 पुरस्कार मिले हैं। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में आयोजित समारोह में ये सम्मान प्रदान किए। योजना के 2 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में राजस्थान को मई महीने के दौरान रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों के सर्वाधिक आवेदन, इंस्टॉलेशन और वेंडर्स के रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में 2रा पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार 90 लाख से 1.5 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं वाले राज्यों की श्रेणी में दिया गया। इसी तरह सबसे ज्यादा इंस्टॉलेशन वाले 10 जिलों की श्रेणी में जयपुर को 7वें स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया। ऊर्जा सचिव और राजस्थान डिस्कॉम की चेयरमैन आरती डोगरा ने ये पुरस्कार ग्रहण किए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि आधारभूत ढांचे के विकास से राज्य के विकास को गति मिली है। वे कल जयपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग की बैठक में भाग ले रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में सड़क तंत्र को मजबूत, सुरक्षित और व्यापक बनाने के लिए उनकी सरकार बड़ी योजनाओं पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ सड़कों का निर्माण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जालौर झालावाड़, श्रीगंगानगर कोटपूतली, अजमेर बांसवाड़ा के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के संबंध में चर्चा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की 3 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने नीरज डांगी को उम्मीदवार बनाकर उन पर एक बार फिर भरोसा जताया है। मीडिया से बातचीत में श्री डांगी ने कहा कि वे प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे। श्री डांगी ने उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने पर केंद्र और राज्य नेतृत्व का आभार जताया। दूसरी ओर सतीश पूनिया और अलका गुर्जर ने भी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने कल रात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। गौरतलब है कि इन 3 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जून है। 18 जून को मतदान होगा और उसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे। प्रदेश में एक नए परिसंचरण तंत्र के सक्रिय होने से कल राजधानी जयपुर सहित 7 शहरों में हल्की से मध्यम बरसात दर्ज की गई। इसके साथ ही कई स्थानों पर तेज रफ्तार हवाएं भी चलीं। सवाईमाधोपुर में रात से ही रुक रुक कर बरसात का दौर चलता रहा। भीलवाड़ा में कभी रिमझिम और कभी तेज बरसात का दौर जारी रहा। जिले के गुलाबपुरा, आसींद, शाहपुरा, जहाजपुरा और मांडलगढ़ सहित भीलवाड़ा में हुई बरसात से लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं किसानों का कहना है कि कपास की फसल में ये बारिश फायदेमंद साबित

0: साबित होगी। पाली में अल सुबह तेज अंधड़ से पेड़ और होर्डिंग्स गिर गए। भरतपुर में भी आज सुबह हल्की बरसात हुई। कोटपूतली बहरोड के नारायणपुर, विराटनगर और पावटा सहित विभिन्न स्थानों पर कल रात बारिश हुई। इससे कई इलाकों में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई। नागौर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां आंधी और बरसात के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की आशंका जताई है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून केरलम पहुंच गया है। विभाग के अनुसार प्रदेश में 28 जून तक मॉनसून दस्तक दे सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व पर्यावरण दिवस आज। प्रदेश भर में सघन वृक्षारोपण के लिए हरियालो राजस्थान अभियान 2026 शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग को अपनाने पर जोर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। पीएम सूर्य घर योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राजस्थान को 6 पुरस्कार मिले। और प्रदेश में नए परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से कई स्थानों पर आंधी और बारिश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र पर आप और हम जुड़ चुके हैं उस खास प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार। हिंदी में प्रादेशिक समाचारों के बाद आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। और बहुत सारी बातें, बहुत सारी खास मुलाकात जो है हमारी, वो आज के इस प्रोग्राम में होने वाली है। कौन है वो जो अपने कार्यों से इस पर्यावरण को दे रही हैं संरक्षण, उनका संस्थान भी जुटा हुआ है इस मरुस्थल को हरा भरा करने में, वो जानेंगे। क्योंकि आज हमारी खास जो मेहमान हैं हमसे खास बात करने के लिए पर्यावरण से जुड़ी हुई, वो हमारे बीच स्टूडियो में आ चुकी हैं। लेकिन उनसे बातचीत शुरू करें उससे पहले ये खूबसूरत सा गीत जो इमोशंस जोड़ता है हमारे प्रकृति के कुछ खास तत्वों के साथ, यानी कि चांद सितारे फूलों के साथ।

आज है 5 जून और आज है पर्यावरण दिवस, और बहुत सारी बातें जानेंगे कि आज क्यों पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। लेकिन उन सब बातों से पहले आज जो खास मेहमान हमारे साथ नमस्कार कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं, आ चुकी हैं हमारे स्टूडियो में, वो हैं श्रीमती भावना शर्मा, जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज डिविजन में हमारे अपने आफ्री यानी कि एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। और खासतौर पर ये जो भी जंगल की मिट्टी है उसका

रिहैबिलिटेशन और रेस्टोरेशन कैसे किया जाए ताकि अलग अलग जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरिया है वो अपग्रेड हो सके, उस सॉइल की क्वालिटी जो है वो अच्छी हो सके। और सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, गुजरात और दादरा नगर हवेली और दमन दीव में भी इनके प्रोजेक्ट्स चलते हैं। इन सारे प्रोजेक्ट्स को आफरी कैसे मेंटेन करता है, कैसे पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे रहा है, उसके लिए हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए स्टूडियो में आ चुकी हैं श्रीमती भावना शर्मा, जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं, और इनसे बातचीत करेंगी सूफिया खान।

0: बिल्कुल भावना जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 5 जून है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, और विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण दिवस जिस पे बातें तो खूब सारी होती है, लेकिन काम जो है वो क्या क्या किए जाएं, इस पे आप हमें, अपने श्रोताओं को रेडियो के माध्यम से क्या बताना चाहेंगे?
1: धन्यवाद सोफिया जी। जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि आज 5 जून पर्यावरण दिवस है, और इस बार पर्यावरण दिवस की थीम है क्लाइमेट एक्शन। और एक जो अभियान संदेश है वो हैशटैग नाउ फॉर क्लाइमेट है, यानी हमें अपने पर्यावरण के साथ जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता तथा सामूहिक और त्वरित कार्यवाही का संदेश देता है कि अब वो समय है कि अब हमें सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, अब हमें अपने कार्यों को शुरू करना है। तो इसमें हम पर्यावरण से जुड़े सभी जो कार्य हैं, जैसे कि पौधारोपण, प्लास्टिक को यूज़ कम करना, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले पोल्यूशन में कम योगदान देना, ये सारे कार्य करके हम अपने पर्यावरण को और अपने क्लाइमेट को
0: बचा सकते,
1: स्वस्थ कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। तो ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, इसको बंद करने के लिए फिलहाल क्या विकल्प मौजूद हैं?
1: जी देखिए, सिंगल यूज़ प्लास्टिक अभी पर्यावरण के लिए बहुत ही गंभीर चुनौती बना हुआ है, क्योंकि एक तो हमारे विश्व की जनसंख्या इतनी है और इतने लोग अगर सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है ये पर्यावरण के लिए भी बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। लेकिन इसके विकल्प हमारे पास उपलब्ध हैं, बस आवश्यकता है हमें अपने कम्फर्ट जोन से निकलकर उन विकल्पों को अपनाने की, और हम सबका थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट वास्तव में सिंगल यूज़ प्लास्टिक को के उपयोग को कम करके पृथ्वी को बचाने में सहयोग कर सकता है। जैसे सबसे पहली बात कि लोग जो शॉपिंग के लिए या सामान के लिए हम अपने कपड़े या जूट के बैग को जो पहले यूज़ करते थे उसी तरह हम यूज़ करें। दूसरा, हम जो कागज़ और बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग है उसका उपयोग करें, प्लास्टिक की जगह पैकेजिंग में उपयोग उस तरह करें, और स्टील, मिट्टी और कांच के बर्तन का यूज़ करें। हमारे यहाँ मिट्टी का भी विकल्प है यूज़ एंड थ्रो के लिए। तो अगर हम ध्यान से देखें, बांस है, पैकेजिंग मटेरियल में हम बांस का, प्लाई का, इस तरह का यूज़ कर सकते हैं जो कि प्रकृति में आराम से बायोडिग्रेड हो जाते हैं और उसका कचरा नहीं बनता है। तो हम रिड्यूस, रीयूज़ और रीसाइकल के सिद्धांत पर चलें तो हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग को कम कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। हमारी संस्कृति अगर हम बात करें तो जैसे हमारी संस्कृति में यही है कि जो मिट्टी की जो चीज़ें हैं उसको हम यूज़ करते थे पहले, अभी भी जो है वो चलन में आ चुकी
1: वापस
0: है,
1: वापस आ रही है।
0: तो ये चीज़ कितनी प्रेफर करनी चाहिए लोगों को फिलहाल की स्थिति में?
1: नहीं, ये बड़ा ही अच्छा विकल्प है, क्योंकि मिट्टी के कुल्हड़ वगैरह में जब हम कुछ भी खाते पीते हैं तो उसको यूज एंड थ्रो की तरह काम तो लेते हैं, लेकिन वो वापस मिट्टी में मिल जाएगा पुनः है, तो उसकी रीसाइक्लिंग संभव है, उससे कोई भी अपशिष्ट पर्यावरण में बचता नहीं है।
0: बिल्कुल। तो ये बेहतर विकल्प हो
1: ये
0: सकता
1: बेहतर
0: है,
1: विकल्प है। और इवन आजकल लोग बहुत अच्छे अच्छे विकल्प लगा रहे हैं, जैसे पौधे लगाने में प्लास्टिक की थैली का यूज होता था, तो साउथ में, नॉर्थ में, वेस्टर्न में, हर जगह कुछ कुछ नए तत्वों का यूज कर रहे हैं जिससे कि उस प्लास्टिक से भी छुटकारा पाया जाए वन टाइम यूज से। इवन आफरी में भी एक नवजीवन करके हमारे डायरेक्टर डॉक्टर तरुण कांत सर थे 2 साल पहले, तो उन्होंने एक अच्छा सा गमला टाइप बनाया था जिसमें हम बीज बो दे, रख दे पौधा, तो फिर आपको प्लास्टिक से निकाल के नहीं, सीधा उसी को जमीन में लगा दीजिए, खाद भी मिलेगा और कोई तरह का पॉल्यूशन नहीं होगा।
0: बहुत अच्छी बात है ये तो। और जो जैव विविधता है
1: जी
0: भावना जी, उसको बचाने के लिए आफरी जो है वो किस तकनीक पर काम कर रहा है?
1: देखिए, क्योंकि आफरी फॉरेस्ट और जंगलों से ही जुड़ा हुआ है, तो हमारा एक बिल्कुल मुख्य उद्देश्य रहता है कि हम जैव विविधता को बचाएं। जब भी हम कोई प्लांटेशन प्रोग्राम करते हैं तो हम हमेशा लोकल स्पीसीज को और मोनोकल्चर यानी एक ही प्रजाति का चयन नहीं करके उसको मल्टीपल लगाते हैं। जब हम फॉरेस्ट को भी रिहैबिलिटेशन रेस्टोरेशन करते हैं, कई जगह पे किया है हमने, तो हम ऐसा नहीं कि सिर्फ वृक्ष लगा दें, वृक्ष लगाना फॉरेस्ट या जंगल बचाना नहीं है, तो हम वृक्ष लगाते हैं, झाड़ियाँ लगाते हैं, घास और हर्ब्स लगाते हैं, क्योंकि अगर हम प्रकृति में जाएं तो

0: जंगल ऐसे मिला जुला ही होता है। तो आफरी अपने जितने भी, एक तो कंजर्वेशन के कार्य करता है, रेस्टोरेशन के कार्य करता है, उसमें हम स्पीसीज का मिला जुला रूप रहते हैं। तो वो एस्टेब्लिश होने के बाद उसमें एडिशनल स्पीसीज भी और आती हैं, यानी इससे हम जैव, इसके अलावा हमारे यहाँ सीड स्टोरेज है, जर्म प्लस कंजर्वेशन है, मेडिसिनल प्लांट है, नर्सरी है, तो बहुत सारे ये माध्यम हैं जिनके द्वारा हम जैव विविधता को सपोर्ट करते हैं।
1: बिल्कुल। और आज जैसा कि पर्यावरण दिवस है, आज
0: जी
1: बहुत सारे पौधारोपण अभियान जो है वो
0: जी
1: चलेंगे, लेकिन उन पौधारोपण अभियान के वक्त जो पौधे लगाए जाते हैं,
0: जी
1: आज तो उन पे ध्यान दे दिया जाएगा,
0: जी जी
1: लेकिन जैसे जैसे वक्त आएगा, अपनी
0: जी
1: टाइम की वजह से या जो भी
0: जी
1: कहें उसकी वजह से हम उस चीज़ को भूलते जाते हैं।
0: भूलते जाते।
1: तो उस पौधे की जो है वो क्या जीवित दर होती है जिसकी वजह से वो जिंदा रह सकता है?
0: देखिए, ये जो है ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि आजकल पर्यावरण दिवस या जो भी वन दिवस या कुछ होता है तो लोग बहुत सारे पौधे लगाते हैं, नर्सरी से खरीद के लाते हैं, उसके साथ सेल्फी लेते हैं, और सेल्फी लेने के बाद
1: उसको भूल
0: उसको
1: जाते हैं।
0: भूल जाते हैं। लेकिन देखिए, पौधा बड़ा करना एक बच्चे बड़े करने के समान
1: समान
0: ही
1: है,
0: होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो जो लोग लाखों हजारों में या 100 में पौधे लगाते हैं, तो मेरा यही कहना है कि भले ही कम संख्या में लगाएं, क्योंकि पौधे को शुरुआती देखभाल चाहिए होती है। तीन चीज़ों का ध्यान आवश्यक है कि उसको पानी मिले टाइम टू टाइम, उसके लिए ट्री गार्ड बनाएं जिससे कि ग्रेजिंग से सुरक्षा मिले,
1: बिल्कुल।
0: और उसको खाद पानी उपलब्ध रहे। तो शुरुआत में पौधे को ध्यान देना चाहिए। पौधे भले ही कम लगाएं, इवन अगर एक व्यक्ति एक पौधा भी लगाए, लेकिन वो उसको जीवित रखे, उसकी देखभाल करता रहे।
1: मतलब
0: तो
1: ज्यादा की जरूरत नहीं है, अगर आप
0: हाँ
1: एक चीज से शुरुआत करेंगे वो
0: बिल्कुल,
1: बेहतर
0: अदरवाइज
1: है।
0: नर्सरी से पौधा जो ला रहे हैं तो उसके पीछे जितने भी रिसोर्स लगे हैं, मिट्टी, पानी, खाद, बीज, वो सब वेस्ट हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: तो
1: और जो युवा पीढ़ी है
0: जी
1: वो किस तरह इस पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे, वो ऐसी क्या चीजें करें
0: जी
1: जिससे पर्यावरण संरक्षण में उनका योगदान बेहतर हो?
0: देखिए, युवा पीढ़ी जो है उससे मेरा यही आग्रह रहेगा कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो केवल एक ही दिन ये दिवस ना मना लें, बल्कि पर्यावरण को एक जीवन शैली के रूप में अपनाएं। और सबसे कारगर जो उपाय हैं वो है कि कचरे का प्रबंधन सही हो,
1: बिल्कुल।
0: जो गीला और सूखा कचरा है, आजकल तो गाड़ियां आती हैं, उसको अलग छांट के रखें, अलग अलग करें। दूसरा, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करें, वृक्षारोपण जैसे कदम उठाएं। उसके अलावा जो और हर व्यक्ति कर सकता है, बिजली और पानी की बचत करें, तो
1: बिल्कुल।
0: उससे पर्यावरण में इतना बड़ा सहयोग होगा। और दूसरा, पेट्रोल डीजल की बचत करें, सार्वजनिक जो परिवहन के साधन हैं उनका अधिक उपयोग करें। तो ये हमारे पर्यावरण में सर्वाधिक योगदान है जो
1: बिल्कुल,
0: सभी का हो सकता है।
1: वाहनों पर निर्भरता कम करें,
0: जी,
1: चलेंगे तो स्वास्थ्य भी सही रहेगा और पर्यावरण के लिए तो ये
0: बिल्कुल
1: बहुत ही अच्छी बात होगी। बिल्कुल भावना जी, पर्यावरण संरक्षण पर हम बात कर रहे हैं, और ऐसी कौन सी तकनीकों पर हमको काम करना चाहिए भावना जी,
0: जी
1: जिससे आने वाले कल का जो बेहतर पर्यावरण हो सके?
0: जी अगर हम आज ही पर्यावरण की चिंता करें या स्वच्छ करेंगे, तभी आने वाली पीढ़ी को
1: बिल्कुल।
0: स्वच्छ हवा मिलेगी और अच्छा पर्यावरण मिलेगा। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मुख्य बिंदुओं का हमें जो ध्यान देना है, तो वर्षा जल का संचयन हो जाए। जो वर्षा जल बह जाता है, हम सभी को अपने नए घर बनाते समय जो रूफ वाटर हार्वेस्टिंग है, इस तरह की चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। कचरा प्रबंधन है, जैविक खेती, हम केमिकल का इस्तेमाल, जैसे घर पे भी सब्जियां वगैरह पौधे गमले लगाते हैं तो उसमें जैविक जो है खाद उसका उपयोग
1: उसका
0: करें।
1: उपयोग करें।
0: इसके अलावा यह आजकल जलवायु स्मार्ट कृषि जो है, मतलब हमारी एग्रीकल्चर भी आज के युवाओं को
1: स्मार्ट हो गया
0: इस
1: है।
0: तरह होना चाहिए कि जो क्लाइमेट के प्रति प्रतिरोधी हो, यह ना हो कि क्लाइमेट चेंज हो, बल्कि और कम संसाधन में अधिक से अधिक उत्पादन हो, तभी हमारे संसाधन आने वाली पीढ़ी के लिए बच पाएंगे।
1: बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी पीढ़ी को जो
0: जी,
1: है याद रखनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर
0: बेहतर कल
1: एटमॉस्फेयर हो।
0: मिले।
1: तो कचरा प्रबंधन की बात हो गई,
0: जी
1: एक जल प्रबंधन की अगर हम बात करें,
0: जी
1: अब पानी का संकट तो बहुत सारा
0: जी
1: अभी है ही, जैसे कि हमारे जोधपुर में भी अगर हम बात करें, तो जल के लिए ऐसे क्या कार्य किए जाएं जो पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहतर हो?
0: देखिए, जल के लिए जो इम्पोर्टेंट बात है, सबसे पहले तो कि हम एक तो व्यर्थ जल को ना गंवाएं। दूसरा, जल की भी हम कैटेगरीज कर सकते हैं, जैसे अगर हम फिल्टर सभी के घर आजकल जैसे आरओ लगा है, तो उससे जो पानी मिलता है, हम एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट होगा उसका सिस्टम ऐसा व्यवस्थित कर लें कि वही पानी को हम साफ सफाई में, कार धोने में, झाड़ू पोछे में,

0: पौधों को देने में, इस तरह। तो इस तरह क्या है, जो हमारा फ्रेश वाटर है उस पर एक डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। उसको हम सिर्फ पीने में और इस सब में उपयोग करें, भोजन बनाने में, लेकिन पानी का उचित मैनेजमेंट करें, जिससे कि हमारे क्वालिटी का मीठा पानी है उसको बनाने में सरकार के बहुत रिसोर्सेज लगते हैं, उस पर प्रेशर कम रहे।
1: बिल्कुल, इसमें एक बात ये है कि हमें छोटी छोटी चीज़ों से जो है
0: जी,
1: हमारे घर से ही
0: घर से ही
1: शुरुआत करनी
0: शुरुआत
1: पड़ेगी,
0: करनी
1: हमारे
0: होगी।
1: आदतों में बदलाव करना
0: जी
1: पड़ेगा। जैसे कि अगर हम सुबह ब्रश कर रहे हैं
0: जी
1: तो हम टैप
0: हाँ
1: खुला रखते हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: अगर हम नहा रहे हैं तो
0: वही,
1: शावर का
0: कि
1: यूज़
0: हम
1: हम
0: अपनी
1: ज़्यादा
0: आदतों और
1: करते हैं।
0: कंफर्ट जोन से बाहर
1: बिल्कुल,
0: आकर हम बहुत योगदान दे सकते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: अगर शावर का यूज़ ना करके अगर
0: बिल्कुल
1: एक बाल्टी भर ली जाए
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और अगर हम ब्रश कर रहे हैं, मुंह धो रहे हैं, तो टैप जो है एक हाथ, दो हाथ है हमारे पास
0: बिल्कुल
1: एक
0: बिल्कुल
1: हाथ जो है उससे बंद कर सकते
0: बंद कर
1: हैं।
0: सकते हैं।
1: बिल्कुल भावना जी, पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है हमें प्रयास करने ही पड़ेंगे, सिर्फ
0: जी
1: बातों से बात नहीं बनेगी।
0: जी
1: तो एक बात ये भी है कि आज का जो टाइम है उसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत सारे सरकार की तरफ से भी कदम उठाए जा
0: जी
1: रहे हैं, लेकिन हमारा योगदान जो है हम कैसे प्रेरित करें दूसरों को?
0: देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो युवा वर्ग और बच्चे हैं उन्हें केवल ये पर्यावरण की बात सिर्फ किताबों में न दी जाए। जब भी
1: बिल्कुल
0: कोई पौधारोपण का, जल सिंचन का, हम और इवन बचपन से ही उन्हें इन आदतों में इन्वॉल्व कर दें, तो ये उनकी आदतें स्वयं ही पड़ जाएंगी। और जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, अगर हर घर में एक एक दो दो बच्चा जो है वो पानी की बचत और इन सब में लगेगा, बिजली की बचत, पेट्रोल की बचत, ये शुरू से सीख ले, तो इससे बहुत योगदान होगा। और उसमें आजकल आपका जो सोशल मीडिया है उसका बहुत योगदान है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे और युवा हैं वो अपना सारा ज्ञान अखबार वगैरह की तुलना सोशल मीडिया से ही लेते हैं,
1: बिल्कुल,
0: तो इसके द्वारा भी उनको प्रेरित कर सकते
1: सोशल
0: हैं,
1: मीडिया प्रेरणा का जो
0: एक स्रोत
1: स्रोत
0: है।
1: हो गया है। बिल्कुल, और आज की जो पर्यावरण संरक्षण की जो थीम है वो
0: जी
1: है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर
0: जी
1: अवर फ्यूचर, यानी प्रकृति से प्रेरित
0: जी
1: जलवायु के लिए और हमारे भविष्य के लिए। तो
0: जी
1: क्या ये इंगित करती है?
0: ये इंगित ये करती है कि अब हमें जो है, अगर हमने अपने ये सारे एफर्ट्स हर व्यक्ति ने नहीं लगाए तो फिर आने वाला कल बहुत मुश्किल में होगा। ये जो क्लाइमेट चेंज हम इफेक्ट दिखने ही लग गया है सभी को, कि बिना टाइम के बारिशें हो रही हैं,
1: बिल्कुल
0: गर्मी अत्यधिक पड़ रही है, तो ये सब नुकसान हमें ही भुगतने होंगे। तो इन सब हम पानी, ऊर्जा, बिजली बचा के, पौधे लगा के, ये हम पर्यावरण को अपने संरक्षित रख सकते हैं। और हमें संसाधनों का उपभोग कम करना चाहिए, जैसे महात्मा गांधी ने कहा है कि ये जो धरती है ये सभी की आवश्यकता को तो पूरी कर सकती है लेकिन लालच को वो पूरा नहीं कर सकती। तो हम ग्रीड को कम करें और नीड बेस्ड जो है प्रिंसिपल उस पर काम करें।
1: बिल्कुल भावना जी, और चलते चलते आप रेडियो के माध्यम से हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: जी, आपके श्रोताओं को मेरा यही संदेश है कि पर्यावरण संरक्षण, जैसा मैंने पहले भी कहा था, उसको हम एक ही दिन से ना जोड़कर हम अपनी जीवन शैली में ये परिवर्तन अपना लें, तो हम हमारे लिए भी स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और स्वच्छ पर्यावरण मिलेगा, और आने वाली पीढ़ी को भी ये सभी चीज़ें प्राप्त होंगी।
1: बिल्कुल, तो श्रोताओं पर्यावरण संरक्षण के दिवस पर आज हमसे जुड़े डॉक्टर भावना शर्मा, सीनियर साइंटिस्ट आफरी, उनसे हमने बातचीत की पर्यावरण संरक्षण पर। और श्रोताओं यही संदेश है कि बात से बात नहीं बनेगी, प्रयास बहुत सारे करने पड़ेंगे। और भावना जी आपका बहुत बहुत स्वागत किया, आपने अपना कीमती वक्त जो है हमें दिया।
0: धन्यवाद, थैंक यू।
2: श्रोताओं, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर भावना शर्मा, जो कि सीनियर साइंटिस्ट थी फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज डिवीजन, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जोधपुर, राजस्थान के। और इनसे बातचीत कर रही थी सोफिया खान। और बिल्कुल, जब प्रकृति की बात आई है और खूबसूरत गीतों के माध्यम से प्रकृति के साथ अगर हम अपने इमोशंस का ना जोड़ें तो फिर क्या बात है। तो बिल्कुल भावना जी की ही पसंद का ये खूबसूरत सा गीत, जो मैं गंगा और यमुना की लहरों में डुबा ले जाता है, बहा ले जाता है, उनके संग संग घुमा ले जाता है।

0: श्रोताओं, बात ही बात पे बात निकल चली है और बात करते हैं अब इतिहास में आज का दिन क्यों है खास। तो श्रोताओं, 1723 में आज के दिन एडम स्मिथ, स्कॉटिश अर्थशास्त्री और दार्शनिक आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक,
1: इनका जन्म हुआ था।
0: आज
1: और
0: के दिन
1: खास तौर पर अगर हम अर्थशास्त्री की बात करें तो इसको एक विशेष विज्ञान के रूप में, सामाजिक विज्ञान के रूप में जो स्थापित करने का श्रेय है वो एडम स्मिथ को ही जाता है, जब इन्होंने एक खास किताब लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। तो कोई भी राष्ट्र समृद्ध क्यों है, उसकी संपत्ति किस तरह से उसका आधार बनती है, इस बारे में बात की थी एडम स्मिथ ने। और तब से अर्थशास्त्र एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान के रूप में जाने जाने लगा। इसके साथ ही सन 1967 में बात करते हैं, जब मध्य पूर्व में इसराइल और अरब देश जैसे कि मिस्र, सीरिया और जॉर्डन, इनके बीच प्रसिद्ध सिक्स डे वॉर की शुरुआत हुई थी। आज ही का वो दिन था, 5 जून का।
0: और 2005 में आज ही के दिन श्रोताओं, ताइवान ने अपनी पहली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। और इसी के साथ 2017 की बात करें तो सबसे भारी रॉकेट GSLV मार्क 3 D1 का भी आज ही के दिन सफल प्रक्षेपण हुआ था।
1: इसके साथ ही दोस्तों, जो आज का खास दिन है वो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र द्वारा सकारात्मक पर्यावरण के लिए दुनिया भर में मनाया जाने वाला एक उत्सव है। और सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम में विश्व भर के देशों का अपना पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था, और इसी सम्मेलन के बाद एक पृथ्वी का सिद्धांत मान्य किया गया था, और तब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जन्म हुआ था। और हर साल आज के दिन को, यानी कि 5 जून को, पर्यावरण दिवस आयोजित करके नागरिकों को प्रदूषण की समस्या से अवगत कराने का निर्णय लिया गया था। और बिल्कुल, ये जो पर्यावरण का कार्य है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हम सबके लिए ही नहीं, वर्तमान के लिए ही नहीं, हमारे भविष्य को भी बेहतर बनाने के लिए
0: हमारी ये जिम्मेदारी है श्रोताओं कि पर्यावरण को बचाने के प्रयास में हम भागीदार बने, पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि पेड़ पौधे हैं तो हम हैं, वरना सब खत्म है।
1: बिल्कुल, तो हम ऐसे खत्म नहीं होने देंगे। हम आज जो खूबसूरत गीत इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं वो भी सब जुड़े हुए हैं प्रकृति से। और बिल्कुल, ये जो प्रकृति की सुंदरता है और प्रकृति का संगीत है, अगर ये हमारे दिलो दिमाग तक और कानों तक पहुंचने लगता है तो वो सारी आवाजें हमें सुनाई देने लगती है जो इस गाना के माध्यम से आपको सुनाने की कोशिश की गई है।

0: दोस्तों आप और हम बने हुए हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार के साथ, और नमस्कार में हर शुक्रवार को सप्ताह विशेष में हम आपसे शेयर करते हैं एक खास किताब की बात। और आज की खास किताब लिखी जेन ऑस्टिन ने सन 1813। किताब का नाम प्राइड एंड प्रेजुडिस। बिल्कुल, ये एक प्रसिद्ध रोमांटिक उपन्यास। कहानी है बेनेट परिवार की, और खास तौर पर उनकी जो 5 बेटियां हैं उनकी शादी की चिंताओं की, सामाजिक क्या स्थिति है उनकी, और साथ ही साथ इस उपन्यास के जो मुख्य पात्र हैं एलिजाबेथ बेनेट के मिस्टर डार्सी के साथ जो प्रेम संबंध है उसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। क्या है कहानी? हर्टफोर्डशायर में बेनेट परिवार जो रहता है उसमें श्रीमती बेनेट की जो सबसे बड़ी इच्छा होती है वो होती है कि अपनी जो 5 बेटियां हैं उनकी अच्छी जगह पर शादी करनी है। और बेटियां कौन? जेन, एलिजाबेथ, मैरी, किट्टी और लिलिया। अब इस इलाके में एक मिस्टर बिंगले नाम के एक अमीर युवक का आगमन होता है, और जो कि किस्मत से कुमारे भी हैं। तो स्थानीय डांस पार्टी में मिस्टर बिंगले को सबसे बड़ी जो बेटी है जेन बेनेट उनसे प्यार हो जाता है। वहीं बिंगले के जो दोस्त हैं वो अमीर और अहंकारी मिस्टर डार्सी जो हैं वो एलिजाबेथ के साथ नाचने से इनकार कर देते हैं। तो एलिजाबेथ के मन में डार्सी के प्रति एक नफरत और पूर्वाग्रह आ जाता है। पूर्वाग्रह यानी कि प्रेजुडिस। और कुछ समय बाद डार्सी एलिजाबेथ की बुद्धि और सुंदरता के प्रति आकर्षित भी हो जाते हैं और शादी का प्रस्ताव भी दे देते हैं। लेकिन क्या होता है, क्या एलिजाबेथ इस प्रस्ताव को मानती है या नहीं?
1: बिल्कुल नहीं, एलिजाबेथ इसे गुस्से में ठुकरा देती है और उन पर अपनी ही बहन जैन की खुशियां बर्बाद करने का आरोप भी लगाती है। और अपनी अस्वीकृति के बाद डार्सी एलिजाबेथ को एक लेटर लिखकर अपनी सफाई देते हैं, और इसमें वो बताते हैं कि उन्होंने क्यों जैन और बिंगले को अलग किया था, और मिस्टर विकहम यानी जो एक धोखेबाज सैनिक जिसने डार्सी की बहन को बहलाया था उसका असली सच भी उसको बताते हैं। ये सच जानकर एलिजाबेथ की आंखें खुल जाती है, और एलिजाबेथ की छोटी बहन लिडिया मिस्टर विकहम के साथ जो है वो भाग जाती है। और इस पारिवारिक बदनामी से बचने के लिए डार्सी गुप्त रूप से विकहम के कर्ज चुकाकर दोनों की शादी करवाती है, और बाद में इस बात का पता चलता है एलिजाबेथ को। मिस्टर बिंगले वापस लौटते हैं और जैन से शादी भी कर लेते हैं। मिस्टर डार्सी दोबारा एलिजाबेथ को शादी के लिए प्रपोज भी करते हैं, और इस बार एलिजाबेथ अपना घमंड और पूर्वाग्रह भुलाकर उनका प्रस्ताव जो है वो स्वीकार कर लेती है। तो श्रोताओं, ये उपन्यास दर्शाता है कि कैसे लोगों के बीच गलत फहमियां और झूठा अहंकार यानी प्राइड दूर होने के बाद सच्चा प्यार पनपता है।
0: बिल्कुल, और ये जो सच्चा प्यार पनपता है सोफिया, ये चाहे कोई भी देश हो, चाहे ये बात लंदन की हो रही है, चाहे अगर हम भारत की बात करें या अमेरिका की बात करें, जर्मनी, फ्रांस, यानी दुनिया के किसी भी देश की बात करें, जो सच्चा प्रेम है उसको तो सभी जगह एक ही जैसे मान्यता मिली है। और इसी तरह की मान्यता मिली है पर्यावरण को, हमारी प्रकृति को, चाहे कोई भी देश हो, चाहे अगर हम कहें वो उस देश का पर्यावरण, चाहे हमारे देश का पर्यावरण, प्रकृति ने तो अपना सौंदर्य जो है वो सभी जगह समान रूप से बांटा है। हम उसका कितना दोहन कर पाते हैं, कितना उसके साथ अपनी जीवन शैली का सामंजस्य बिठा पाते हैं, बस यही जानने और सोचने की बात है आज के खास दिन यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। और ये खास गीत जो देश की सरहदों के पार जाकर पर्यावरण को एक अलग एकत्व का एहसास देता है, एकता की मिसाल बनता है, खूबसूरत गीत फिल्म वीर ज़ारा से आपके लिए।

0: बहुत अच्छा किया तुमने ये मुझे सावधान कर दिया कि मैं ये जो भी ई वेस्ट होता है उसे इस तरह से कचरे के डब्बे में सामान्य कचरे के साथ ना फेंकूं।
1: बिल्कुल, इससे अगर हम नॉर्मल कचरे के डब्बे में फेंकते हैं तो बहुत हानिकारक होता है इसके
0: तो
1: लिए।
0: फिर मुझे क्या करना चाहिए ये भी बता दो।
1: बिल्कुल स्वाति, इसके लिए कई स्टोर्स होते हैं, वे उनमें ई वेस्ट बीन होता है जिसमें आप ये डाल सकते हैं, और अगर ई वेस्ट को उस बीन में डालेंगे, कई बार जो है कंपनी आपको कुछ कूपन्स भी देती है, कुछ ऑफर्स भी देती है इसमें,
0: हाँ
1: तो फ़ायदा क्या फ़ायदा, और प्रकृति को जो है वो नुकसान भी नहीं होगा।
0: बिल्कुल, और ये मैंने देखा है कि आजकल हमारे जो पुराने फोन की बैटरीज होती हैं या चार्जर होते हैं, इवन जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, ये कचरा अगर सही ढंग से इसका निस्तारण ना हो तो ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और आज तुमने मुझे सजग कर दिया है, तो बिल्कुल अगर हमारे श्रोता भी ये हमारी बात सुन रहे हैं और वो इस ई वेस्ट के निस्तारण के प्रति सजग हो जाते हैं तो हमारी आज की ये काम की बात बिल्कुल सार्थक हो जाएगी। तो और भी सार्थक हमारे प्रयास चलते रहेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। आप बने रहिए हमारे साथ और सुनिए ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

0: श्रोताओं, अब जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो सिर्फ प्लास्टिक के बारे में हम सोचते हैं और इससे पर्यावरण को नुकसान भी है, लेकिन दोस्तों नुकसान है एक चीज़ और, वो है ई वेस्ट के बारे में अगर हम बात कर लें थोड़ी। जैसे कि अगर आपके फ़ोन का पुराना चार्जर या कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ख़राब हो गई है तो उसे यूं ही नॉर्मल कचरे के डिब्बे में ना फेंकें, क्योंकि इनमें जो लेड और मर्करी जैसे ख़तरनाक केमिकल होते हैं जो ज़मीन और पानी को जहरीला कर देते हैं।
1: बिल्कुल सोफिया, तुमने मुझे एक बहुत बड़े, ये जो मैं पर्यावरण को नुकसान करने जा रही थी ना, उससे बचा लिया, क्योंकि मैं आज ही अपना चार्जर जो मेरा उसका वायर कट गया था तो मैं उसको फेंकने वाली थी, लेकिन

0: और श्रोताओं, अब कार्यक्रम में बात करते हैं जन्मदिन विशेष ही। तो आज जन्मदिन मना रहे हैं भारत के प्रसिद्ध टेनिस प्रशिक्षक और पूर्व टेनिस खिलाड़ी रमेश कृष्णन। आज ही के दिन 5 जून 1961 को चेन्नई में इनका जन्म हुआ। और श्रोताओं, 1980 के दशक में इन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल तक ये पहुंचे थे और डेविस कप टीम में भी फाइनल तक ये पहुंचे थे। और अगर हम जयंती विशेष की बात करें तो आज मलयाली भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार गोविंद शंकर कुरूप की भी जयंती है। आज के दिन 5 जून 1901 को केरल में जन्मे गोविंद शंकर जी को कोचिन की पंडित परीक्षा पास करके अध्यापन की योग्यता इन्होंने प्राप्त की थी। और उनके लिखे कविता संग्रह में अगर हम बात करें तो साहित्य कौतुकम, चारखंड और कुशट पाथेमय है। और नाटक में है संध्या इरुटिनु मुंपू है। और 1963 में श्रोताओं, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है।
1: और साथ ही साथ दोस्तों, अगर बात करें नारायण मल्हार जोशी की, तो भारत में ट्रेड

0: यूनियन आंदोलन के ये जन्मदाता थे और समाज सेवा में भी अग्रणी रहे। महिलाओं और बच्चों के लिए कई चिकित्सालयों की स्थापना भी इन्होंने करवाई थी।
1: और इसी के साथ श्रोताओं, पुण्यतिथि अवसर विशेष पर भी बढ़ते हैं आगे। और श्रोताओं, भारत की आज़ादी से पहले के एक प्रतिभाशाली गज़ल और गायक मास्टर मदन की आज पुण्यतिथि है। एक ऐसे कलाकार थे ये जो 1930 के दशक में ख्याति प्राप्त कर मात्र 15 वर्ष की उम्र में 1942 में आज के दिन 5 जून को इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनके जीवन में केवल 8 गाने ही रिकॉर्ड हो पाए, जिनमें सार्वजनिक रूप से 2 ही गानों की रिकॉर्डिंग सब जगह मिल पाती है।
0: और साथ ही साथ दोस्तों, बात करें अगर हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण आधुनिक विधा जो ललित निबंध है उसके क्षेत्र में अपने विशिष्ट योगदान के लिए जाने जाने वाले कुबेरनाथ राय की, और इन्होंने 300 से ज़्यादा निबंध लिखे जो साहित्य संस्कृति की दुनिया में बहुत ज़्यादा सराहे गए। और ख़ास तौर पर इन्होंने मराल, प्रिया नीलकंठी, निषाद बांसुरी, मन पवन की नौका, रामायण महातीर्थम शीर्षक से विशेष संग्रह भी लिखे। और आज ही के दिन सन 1996 में इनका निधन हुआ था और इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ के मूर्ति देवी पुरस्कार से नवाजा गया था। तो बिल्कुल, ये तो वे खास लोग थे जिनका संबंध था आज के खास दिन से। आप बने हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार के साथ आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र पर।

0: दोस्तों, इसी खूबसूरत गीत के साथ हम आपको आज के इस नमस्कार के सफर में छोड़े जा रहे हैं। मैं थी आपके साथ स्वाति
1: और मैं सोफिया, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।

अभी आपने सुना मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के ठीक 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत में पहली लोक रचना सुने श्रोताओं सीमा मिश्रा की आवाज़ में।

इस लोक रचना के साथ ही लोक संगीत कार्यक्रम यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है, मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर। सवेरे के 10:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में पहला गीत सुनिए श्रोताओं, सचेत टंडन और परंपरा टंडन की आवाज़ों में।

श्रोताओं, अभी आपने सुना सुगम संगीत मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सुबह के 11 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में हम सबसे पहले आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म आजा नचले से ये गीत, राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में। बोल हैं जयदीप साहनी के और संगीत है सलीम सुलेमान का।

आइए श्रोताओं, अगला गीत सुनते हैं फिल्म ये स्टूपिड प्यार से। केके की आवाज़ में बोल है यूसुफ अली खान के और संगीत है विपिन पटवा का।

लीजिए श्रोताओं, अगला गीत पेश है आपके लिए। फिल्म यस बॉस से सुनिए ये गीत अभिजीत की आवाज में। बोल हैं जावेद अख्तर के और संगीत है जतिन ललित का।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म विक्ट्री से ये गीत केके की आवाज़ में। बोल थे अमिताभ वर्मा के और संगीत था अनु मलिक का।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आइए अगला गीत सुनते हैं, फिल्म ये दिल लगी से लता मंगेशकर, उदित नारायण और अभिजीत की युगल आवाजों में। बोल हैं समीर के और संगीत है दिलीप सेन और समीर सेन का।

श्रोताओं, भी आपने सुना अभिजीत सावंत की आवाज़ में ये गीत, बोल थे समीर के, और संगीत था हरदीप सिद्धू और प्रेमपल हंस का। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म तुम मिले से के की आवाज़ में। बोल हैं सैयद कादरी के और संगीत है प्रीतम का।

अभी आपने सुना अभिजीत की आवाज़ में ये गीत, बोल थे नुसरत के और संगीत था सप्तऋषि का। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म लॉटरी से, अभिजीत सावंत की आवाज़ में। बोल है कुमार के और संगीत है संतोष सिंह का।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म सिंग इज किंग से ये गीत राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में, बोल थे मयूरपुरी के और संगीत था प्रीतम का। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। दिन के 12 बज चुके हैं, आइए अब सुनते हैं लोक संगीत। लोक संगीत में हम सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं मुकेश चौधरी और माहिराज की आवाज़ों में ये लोक रचना।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आइए श्रोताओं अगली लोक रचना सुनते हैं अनुराधा की आवाज़ में।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आइए श्रोताओं, अगला लोकगीत सुनते हैं सीमा मिश्रा की आवाज में।

श्रोताओं, सीमा मिश्रा की इसी लोक रचना के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। दिन के 12:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में हम पहली गज़ल आपको सुनवा रहे हैं बाबुल सुप्रियो की आवाज़ में।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आइए श्रोताओं अगली गजल सुनते हैं पंकज उदास की आवाज में।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आइए श्रोताओं अगली गजल सुनते हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाजों में।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आइए श्रोताओं, सुगम संगीत की आखिरी गजल सुनते हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाजों में।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना सुगम संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। दिन के 1 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रकृति का संतुलन को बनाए रखना देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में उन्होंने ये बात कही। श्री शर्मा ने कहा कि प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है और ये हम सभी का दायित्व है कि हम भी उसे बदले में कुछ दें। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया।
2: प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रकृति सब कुछ हमें देती है। जो आपकी आवश्यकता है उनकी पूर्ति हमारी ये प्रकृति करती है। सब कुछ हमें देती है, इसको कुछ हम भी देना तो सीखें। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं। चाहिए कि आज से मैं संकल्प लेता हूं कि इसके क्षेत्र में मैं ये काम करूंगा, या मेरे खुद के व्यवहार में चेंज लाते हुए मैं पानी की बिजली की बचत भी करूंगा और पर्यावरण में मेरा सहयोग करूंगा।
1: मुख्यमंत्री ने इस दौरान राज्य को कई सौगात दी। उन्होंने अलवर और भिवाड़ी में अर्ली

0: वार्निंग सिस्टम पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से इन औद्योगिक क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता पता लगाया जा सकेगा। इस दौरान राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल और सीएसआईआर सीरी पिलानी के बीच एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए एमओयू किया गया। इसका उद्देश्य प्रशासन में इको फ्रेंडली तकनीकी और नवाचार को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री ने चार औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए ग्रीन को रेटिंग पुरस्कार दिए गए। श्री शर्मा ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के चार नए क्षेत्रीय कार्यालयों का शिलान्यास किया। ये कार्यालय जैसलमेर, सवाईमाधोपुर, बांसवाड़ा और झुंझुनू में बनाए जाएंगे। उन्होंने 7 वन पौधशालाओं का भी लोकार्पण किया। साथ ही वन्य जीवों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में बनाए गए 8 प्री बेस एनक्लोजर का लोकार्पण किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने हरियालो राजस्थान अभियान 2026 की विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में पौधा रोप कर शुरुआत की। इसके साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तीसरे चरण की भी शुरुआत हुई। गंगा दशमी से शुरू हुआ वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान आज ही संपन्न हो रहा है। अभियान के तहत सभी जिलों में समारोह रखे गए हैं। इस दौरान जल संरक्षण और जन भागीदारी के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले लोगों और संस्थाओं को जल गौरव सम्मान दिए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज भीलवाड़ा की खारी का लांबा ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री गांव में ही रात्रि विश्राम करेंगे और अगले दिन सुबह गांव का भ्रमण कर लोगों से बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री का गांव की प्राचीन बावड़ी में जल पूजन का भी कार्यक्रम है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत रुख तटस्थ रखा गया है। स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। सहकारी मॉडल पर आधारित भारत टैक्सी सेवा का जयपुर में ट्रायल शुरू कर दिया गया है। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने इसे सहकारी परिवहन पहल को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि जयपुर के नागरिक अब भारत टैक्सी की बाइक, ऑटो रिक्शा और कैब सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने बताया कि जयपुर में लगभग 13,000 टैक्सी चालक इस प्लेटफार्म से जुड़ चुके हैं। उन्होंने बताया कि नए ग्राहक ऐप के माध्यम से यात्रियों को सुलभ किराया, पारदर्शी और निश्चित दरें, एसओएस आपातकालीन सुविधा, स्थानीय और विश्वसनीय चालक तथा बेहतर ग्राहक सहायता जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद शिकायत निवारण के लिए 70,000 से अधिक विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें अंकों के सत्यापन के लिए 7,314 आवेदन और पुनर्मूल्यांकन के लिए 63,000 से अधिक आवेदन मिले हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। दोपहर के 1:05 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं कृषक भाइयों के लिए कार्यक्रम कृषि जगत।

इसमें मरीज एक और किस्म है ICMH 356। इन किस्म मरीज की पकने रीज की अवधि है वह 75 ले 80 दिन तई हो जाया करे और औसत अनाज रीज की उपज है वह 1500 किलोग्राम उले 1800 किलोग्राम प्रति हेक्टर और चारो जी को है वो 3500 किलोग्राम उले 4000 किलोग्राम प्रति हेक्टर होया करे। ए किस्म आपरे किसान भाई लेवर बढ़िया आपण जी को खेत है आपरे बढ़िया आपरे तैयारी करा आपा खेत रे महीने जो बाजरे की खेती आप दोमट मिट्टी में कर सका बलुई दोमट में कर सका बलुई रे महीने सफलतापूर्वक तरीके में आप कर सका और हंगो मोटी बात आनी चाहिए कि भाई जमीन महीने जो जल निकास है उनकी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। क्यों मतलब वो है कि जटे जिन खेतर महीने पानी रो भराव हो जा तो वटे देखो के इन फसल ने नुकसान हो जाए करे और बरसात जो हम लाल दिन वेरी है तो आप बढ़िया जुताई करा मिट्टी बढ़िया पलटा और बाद महीने आप जिन वक्त बावनो वे जिका पाटो लगावन वक्त आपने ध्यान रखना है कि भाई जिका भी ढेला ढगला जिका है वे अपने खेत्र में नहीं रहना चाहिए और पूर्ण रूप में आप समतल करन रखा तो बढ़िया रहे। हमें एक बात आवे है कि भाई बाजरे रो जिको आप बीज लेवा वो लंगे टंगे 4-5 किलोग्राम जिको बीज है वो प्रति हेक्टर पर्याप्त लिया करे और बढ़िया उपज रे वास्ते किसान भाई कहीं करे कि आपरे पौधारी उचित संख्या आपरे रखे और बाजरे की बुआई जिकी पंक्तियारा महीने 45 ले 50 सेंटीमीटर दूरी माते आपरे रखे और साथे पौधा सु पौधारी जिकी दूरी है वह 10 ले 15 सेंटीमीटर आपने रखनी चाहिए। हम एक बात आवे कि भाई आपा बाजरे की पैदावार लेवा तो साथे आपा खाद और जिको उर्वरक रो जिको प्रबंधन है वो भी आपने रखनो बहुत जरूरी है क्योंकि पौधा ने उचित बढ़वार वास्ते जिका उचित पोषक प्रबंधन है वो होना बहुत जरूरी है। और जो आप बात करा कि भाई बाजरे की फसल ले वास्ते 5 टन जिकी अच्छी हड़ियोड़ी जिकी गोबर है वो आपन लेनी चाहिए और साथ साथ जिकी कंपोस्ट खाद है उनरो भी प्रयोग आपने करना चाहिए। बाजरो वर्षा माते आधारित है इन वास्ते 40 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टर आपने आवश्यकता होया करे। इन हाथ आते जिन वक्त आप बाजरे की बुआई करा उन वक्त 44 किलोग्राम यूरिया और हाथ 250 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट या 87 किलोग्राम डीएपी या 9.5 किलोग्राम यूरिया खेत मैंने प्रति हेक्टर दर सु आपने देवनो चाहिए। पोषक तत्व जिते ही बाजरे ने लागेला तो बाजरे की जी पैदावार है वह आपरे ज्यादा वेला। किसान भाई एक चीज रो अपन ध्यान रखना है कि भाई आप बाजरे की पैदावार लेनी चाहवा ज्यादा पैदावार आप बढ़ावनी चाहवा तो अपन ध्यान रखना है कि भाई जो फसल चक्र है उनने अपनावनो बहुत जरूरी है क्योंकि कटी कटी असिंचित जटे क्षेत्र है वटे बाजरे बाजरे महीने अगले साल अपने दलन है जो आप बात करा गवार है मूंग है मोट है ये अपन ले होना चाहिए और साथ साथ जटे अपना सिंचित क्षेत्र है ट्यूबवेला है अपने बेरा बीजा है तो वोटे जैसे बाजरो है सरसों है बाजरा हाथ बाद में जीरो है बाजरा गहू फसल चक्रो जी को प्रयोग है वो आपने अपनावनो चाहिए। किसान भैया आ ही जानकारी कि भाई आप बाजरे री लाभकारी जी की खेती है वह आप किन तरह से कर सका। कृषि जगत प्रोग्राम रो भगत पूरा वेरियो है दिनेश राणे जाने शेख राव राम राम।

यह आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्स पर सूर्य नगरी चैनल एवं एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्स पर एफएम सन सिटी चैनल। दोपहर के 1:15 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यक्रम गणगौर।

0: गणगौर स्वर्ण वाली सगली सखिया ने शीतल राठौड़ रा घणे मान राम राम, और आराधना जी आपने भी राम राम।
1: बिल्कुल शीतल, आपने भी घणे मान सो राम राम, और सुनने वाली सलोनी सखिया ने भी घणे मान राम राम। शीतल, धरती पर सबसे सुंदर अगर संगीत हो कोई है तो वो है प्रकृति रो, और ये धरती रो जो श्रृंगार है वो है वन्य जीवा पारो। और आज अपा विश्व पर्यावरण दिवस है जिसको मना रही हाँ।
0: बिल्कुल, प्रकृति रो जो अच्छ खास उत्सव कह सका हाँ वो आप मनाए रहा हाँ, और सभा ने विश्व पर्यावरण दिवस री जो है घणी घणी शुभकामनावा। रूख लगाओ, जल बचाओ, धरती ने हरियाली देओ, प्रकृति मारो मान बढ़ाओ, जीवन ने खुशहाली देओ। तो वही संदेश है जो को आज इन कार्यक्रम में भी रह वेला, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: आज रोगण को रह वेला पर्यावरण दिवस रह माते ही खास खास रूप सु। तो बाता कराला घणकरी, पर पहली शुरुआत करा इन गीत रे साथे।

0: शीतल, अपन ने भले ही समुद्र है जिको देखने नहीं मिले, छूने रो वो को मिले, लेकिन अपन हर सांस और हर घूंट में पानी रो जिको निवाड़ो है वो अपन जा रही है, और वो जिको स्पर्श है वो एक समुद्र तरह ही है, और वो स्पर्श जिको आप कह रहे हैं समुद्र तरह, तो समुद्र ने साफ रखना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: और पर्यावरण दिवस है आज आप मना रहे हैं, पर जरूरी कोनी कि आप विश्व पर्यावरण दिवस पर ही आप साफ सफाई, पेड़ पौधा, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण की बात करा, क्योंकि वो अपन एक दिन की बात करनी है, आ अपने जीवन रे हर एक पल हर एक सांस रे सागे वो पर्यावरण जिको चल्या करे।
1: बिल्कुल सही, क्योंकि वो एक दिन रो अभियान नहीं है, तो आपने रोज रे आपरे जीवन में आपने उतारना है कि किन तरीके से आप प्रकृति री है जिकी रक्षा कर सका हाँ, इरो संरक्षण कर सका हाँ। और प्रकृति में जितना भी घटक है इरा, चाहे वो नदी वे, चाहे पहाड़ है, पेड़ पौधा है, पंछी है, जीव जिना

0: है और आपा खुद भी हाँ या प्रकृति रो आपा एक अंग हाँ, तो आपा सगला जकाजद मिल र ई पारिस्थितिकी तंत्र ने संतुलित रखा हाँ, तो और हर एक घटक रो ई प्रकृति रे मायने कोई ना कोई जो है एक मुख्य भूमिका रहवे है। और बहुत ही जरूरी है कि ये प्रकृति री हर एक चीज और हर एक घटक आपा जो है वीरो संरक्षण करा, चाहे वह जीव जिनावर हो, वारी भी आपने जो है संरक्षण करना है, साथ ही साथ आपने जल रो संरक्षण भी करना है और एक प्रकृति ने भी स्वच्छ साफ सुथरो रखना है।
1: बिल्कुल सही बात है जी। आप बोले ने कि यदि कोई भी आप लिखो ने पर्यावरण री जिकी आप भूमिका बना रहे हो कुछ भी करा रहे हो, तो भी मैं अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण कोने राख रही, भी मैं अपने ही महत्वपूर्ण है कि आप खुद भी मैं कितो योगदान दे रहे हैं। अगर आप केवल अर्थव्यवस्था पर ही विचार कर रहे हो तो उन समय जब आप विचार करो उन समय आप एक बार सांस रोक कर देखो, आपने पता चल जाए कि महत्वपूर्ण कहीं अर्थव्यवस्था जरूरी है या पर्यावरण जरूरी है। तो कहने का अर्थ हो ये कि पर्यावरण सबसे ऊपर है। पर्यावरण वास्ते देखो एक किसी चीज़ है कि हर आदमी आप अपने हिस्से रो सब चीज़ें, मतलब आप रोटी खाना है पानी पीना करा, लेकिन एकदम समस्या आवे एकदम सब लोगों ने जूझना पड़े, तो आ समस्या आपने खुद ही दियोड़ी है। अगर आप कह रहे हैं कि वातावरण शुद्ध हो गया, पानी आजकल साफ कोनी आ रही है, खान पान है जो कुछ को कोनी आ रही है, ये पीछे सब कुछ अपने ही हाथ है कि आप जिगर खेती कर रहे हैं तो भी मैं मिलावट कर रहे हैं, पानी है तो भी मैं आप साफ सफाई नहीं रख रहे हैं, आप भोजन कर रहे हैं तो भी मैं भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, वातावरण में अगर रह रहे हैं तो बड़ा आप पेड़ नहीं लगा रहे हैं, या अगर लागोड़ा है तो मैंने आप देखभाल नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिला रही है कि आप खुद ही सब चीज़ का जिम्मेदार है।
0: तो बिल्कुल प्रकृति कहने रो मतलब वही है कि पहली तो आपा सुख सुविधा रे लारे जो है प्रकृति ने भूल जावा, और
1: बिल्कुल
0: जद प्रकृति आप रो प्रकोप दिखावे, जद
1: हाँ
0: आपा ने जो है प्रकृति री याद आया करे है,
1: बिल्कुल
0: तो एड़ो समय नहीं आवे इन वास्ते आज ही आपने संकल्प लेनो है कि ई प्रकृति रो आपने संरक्षण करनो है, इन्हें स्वच्छ रखनी है और पेड़ पौधा लगाना है।
1: बिल्कुल शीतल जी। हाँ बार देखो थोड़ा दिन पहले जगह तूफान आया, इतना भयंकर तूफान है, तो भी मैं भी तूफान में कठे ने कठे अपने खुदरी ही भूल है कि आप पेड़ सगला काट दिया, जगह जगह मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं बड़े इतो इस्तेमाल होने लग गयो कि हवा जी की है बा अपने आपने किया रोकेला। अगर ए पेड़ लगाड़ होता तो शायद इतो जी को धरती पर नुकसान हो वो नहीं होता।
0: बिल्कुल, तो ये वास्ते आपा भी कहें कि भाई लगाई दो हरियो बाग, क्योंकि अगर बाग बगीचा रह वेला हरियाली रह वेली तो ए जकी छोटी मोटी समस्या है नहीं, आप ही खत्म हो जावेला।
1: बिल्कुल।

0: तो प्रकृति संरक्षण री आप बात कर रहे हैं, और कई अड़ा लोग है जो इन काम में आपरो पूरो जीवन जो है लगाए रिया है, और बहुत ही अनूठो काम कर रिया है। तो पर्यावरण संरक्षण में आपरे उत्कृष्ट और अनूठे योगदान रे कारण रेगिस्तान रा ग्रीन मैन कया जावन वाला नरपत सिंह राजपुरोहित सु अब सुनावा आराधना जोशी री फोन माथे बातचीत।
1: आप सुन रहे हो आकाशवाणी जोधपुर से घनघोर। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर आप बातचीत कर रहे हैं। प्रकृति आपने जीवन देवे और जल है जिकी आपने ऊर्जा। पर्यावरण आपनो अस्तित्व रो एक आधार है और इन रक्षा करने वास्ते जीवन में समर्पित होना बहुत जरूरी है। पर हर कोई जिको है ई पर्यावरण रक्षा वास्ते आपरो पूरो पूरो जीवन जिको के मांगर की समर्पित नहीं कर पावे। पर कुछ लोग जिका है ई पर्यावरण बचाने के लिए तन मन धन चीना सु आपरे जीवन है जिकन वो उद्देश्य बना ले के मने प्रकृति की ही रक्षा करनी है। तो आज आपारे फोन लाइन द्वारा आपारे सागे पर्यावरण प्रहरी एक सच्चा ग्रीन मैन जिकने उपाधि मिल चुकी है आपने सागे जुड़ चुके हैं नरपत सिंह जी पुरोहित। तो सर आकाशवाणी जोधपुर गणगौर माए आपरो हेत हरख सु स्वागत है।
2: धन्यवाद, और मेरी तरफ से भी स्वागत है आकाशवाणी परिवार जोधपुर का भी।
1: बिल्कुल सर, अगर आप बात करा पर्यावरण संरक्षण री और जल संरक्षण री तो वो संदेश ले रहा आप दुनिया भर रहे माए केवनी एक साइकिल री यात्रा जिकी है आप करी, तो आपरे मन में वो विचार की आयो इन प्रेरणा जिकी आपने कठो मिली।
2: हूँ जदि स्कूल पढ़ता तो जदि शनिवार तो जो बाल सभा है हुआ करती थी, तो वो टाइम एक टीचर कहे स्कूल में जो भी घना पौधा लगाई स्कूल में बीज उगया कराएगा पौधे नीचा, और बीज निकालने स्कूल में ज्यादा पौधा लगाई उन्होंने ज्यादा चॉकलेट मिली। उन चॉकलेट लालच में घूम लगाई कितनी वो लंबो सफर कर दियो उतनी यात्रा कर ली, मतलब 15 साल निकाल लिया लगभग, कोई महसूस नहीं होने मंडियो के मैं पर्यावरण मैंने तो रुमतो रुमतो 15 साल तक मैं निकाल लिया हूँ।
1: अच्छा, मतलब आपकी शुरुआत स्कूल से हो चुकी।
2: स्कूल से हुई थी लेकिन पर्यावरण की जो काम जो कर रही हो 12 मास उनसे 15 सालों में रेगुलर कर रही हो, छोड़ियो नहीं।
1: अच्छा।
2: वो नहीं कि बरसात सीजन आई पौधा लगा दिया पर छोड़ दियो, वो नहीं है, 12 मास एक जिंदगी बना दी पर्यावरण ने।
1: तो आपने इतना समय किया मिले।
2: समय तो निकालना पड़ता है, मिलता नहीं है समय, हर काम के लिए निकालना पड़ता है।
1: बिल्कुल
2: घर
1: सही।
2: वालों ने मिठाई दुकान खोल दी पढ़ाई के बाद में, कहीं पर्यावरण का काम कर रहा है पौधे लगा रहा है, पता नहीं ठीक है गलत लाइन होनी चला जाओ आज रे संगत रहे शाम हो, तो दुकान खोल दी मिठाई री निवाई टोंक में, थोड़ा साल चला 1-1.5 साल तो मनो सेट नहीं बैठो मामलो, तो दुकान बेच मैं जीजा जी नो साइकिल यात्रा ने निकल गए। तो
1: अच्छा, तो
2: साइकिल यात्रा शुरू की उन दिन घर वालों पता चले को नरपतो दुकान बेच दी साइकिल ने जम्मू कश्मीर निकल गए। साइकिल यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंच गए बाद में घर वाला कोई गए कहीं नहीं बोलियो, चलो ठीक है जो करे उन करवा दो। तो उन साइकिल यात्रा में 3 साल 2 महीना 24 दिन टाइम लागो,
1: अच्छा।
2: मणिपुर मेघालय मिजोरम राज्य में छोड़ दिया क्योंकि उन क्षेत्रों में खान पीने की प्रॉब्लम आती, शुद्ध शाकाहारी खाना नहीं होने कारण मैं छोड़ दियो, बाकी में टाइम लागो 2 3 साल 2 महीना 24।
1: तो जब आप यात्रा करी तो बहुत सारी मुश्किलें भी आई वेला।
2: कोई भी काम अगर काम कर रहे अगर उसमें सुविधा सुविधा मिल रही है फिर उस काम करने मजा है किस बात का, जिस काम मारोड़ी कह रहे जितना ठोकरो लागो नहीं ये तो संभलना आनंद आई
1: सच्ची बात है।
2: जी। तो सुविधा असुविधा ये यात्रा की सुखद पल है, जिस यात्रा में सुख और दुख दोनों होना तो मजा ना आए।
1: तो आपने यहाँ कहीं जची कि मन साइकिल ले रही यात्रा करने, कोई पीछे कोई खास वजह?
2: उस टाइम में लगभग मेरे को 9 साल हो गए थे राजस्थान में काम करते हुए, मैं राजस्थान में खूब घणो काम कर लियो मैं, क्यों ना एक साइकिल माते पूरे भारत में साइकिल चलाने पौधे

0: पौधे भी नहीं लगे, इन पौधों को केयर किया है, समय समय पानी पिलाया है।
1: असल में जो वन्य जीव है प्यारे
0: जी
1: वास्ते आप भी जल कुंड है जो बना रिया हो, तो इन्हें जगह कुंड बनाओ। बनाते समय आपने किन किन समस्याओं का सामना करना पड़े और अभी तक आप कितना कुंड जगह है बना चुके हैं?
0: सबसे बड़ा सामना है पैसों का। एक जलकुंड बनाने में कम से कम 40 हजार से 50 हजार खर्चा नॉर्मल कुंड का आता है। इस पर व्यवस्थित खर्चा का बनाता हूँ तो 60 से 70 हजार। अगर बेस्ट बनाऊँ, बेस्ट कुछ वो होता है एक अच्छा जलकुंड, उसके बाद छोटी एक वाटिका जिसके अंदर 25 में राजस्थान में वातानुकूल अनुसार जो प्रकृति जो वहाँ की जो क्लाइमेट के अनुसार प्लांटेशन करता हूँ। तो मैंने 14 कुल जलकुंड बनाए हैं। मैं जलकुंड के लिए देखो, कई लोगों को शर्म आती है, मैं शर्म नहीं करता हूँ। मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट करता हूँ, आप हमें 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये दे, ज्यादा से ज्यादा 51 रुपये का डिमांड करता हूँ। मैं 51 रुपये की जगह आपको 51 हजार का काम करके दूंगा। तो रियल में धरातल पे काम कर रहा हूँ। एक सीजन में 800 से ज्यादा पानी का टैंकर डलाता हूँ। कई गाँवों के खाली जलकुंड है, वो जलकुंड में गोद लेता हूँ, कई सालों से भर रहा हूँ। लोगों को सोशल मीडिया पे काम करता हूँ, उसको अपलोड करता हूँ, दिखाता हूँ, लाइव करके दिखाता हूँ मैं ये काम कर रहा हूँ। तो उनको लगता है कि रियल बंदा ये काम कर रहा है। तो मैं लोग आगे आगे से ज्यादा जलकुंड बने। 25वें राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है, कहीं भी बेजुबान जीव पानी की तलाश में, अपने खाने की तलाश में, न जाने कितने छोटे जीव प्यास की वजह से जान गंवा देते हैं। इंसान तो अपनी पीड़ा सुना सकता है, लेकिन
1: बिल्कुल
0: बेजुबान जो जीव किसको अपनी पीड़ा सुनाए। तो ये दर्द दिल में रखते हुए एक मिशन चलाया है, खाली जलकुंड को भरा जाए और जहाँ जरूरत है वहां पर जलकुंड बना जाए। हमारी एक संस्था, हमने ग्रुप दोस्तों ने मिलकर बनाई है, ग्रीन डेजर्ट संस्थान, उसके माध्यम से हम पैसे कलेक्शन करते हैं। कि आज का जमाना ऐसा है कि खुद के इसके अंदर अपलोड करके पैसे लेते हैं तो लोगों का डाउटफुल होता है, पता नहीं खुद के इसके अंदर क्या लेता है। फिर हमने ग्रुप बनाया ग्रीन डेजर्ट संस्थान, उसके माध्यम से पैसे कलेक्शन करते हैं, उसके माध्यम से हम जलकुंड बनाते हैं।
1: तो जिकटे वहां पे सब काम करो तो आपने आपने कई लोगों जगह सहयोग दे रहे हैं आप, बहुत ही अच्छी बात है। एक चीज और बताओ आपकी, आप बरसों से घायल वन्य जीव जिका है बारो रेस्क्यू और उपचार भी कर रही हो, तो इन उपचार रहे समय कोई आपने ऐसा अनुभव है जिसको आज भी आपने याद है, आप भी याद कर भावुक हो जाओ?
0: इसी खूब है, मैंने 400+ हिरण रेस्क्यू की है, और एक हिरण को मैंने रेस्क्यू किया था। वो पता नहीं उसका क्या दर्द था, लेकिन जब मैं उसको पकड़ के मेरे गोद लिया था, जैसे कोई इंसान रो रहा है वैसे रोई वो हिरणी। लेकिन वो हिरणी गर्भवती थी, रोड की वजह एक्सीडेंट थी, फिर वो गई जाल के पेट के अंदर जाके बैठ गई थी। मुझे आज भी याद है, वो सोशल मीडिया पे अच्छा वायरल हुआ था। मैंने अभी 400+ हिरण रेस्क्यू की है, 30 मोर, 30 खरगोश, 2 नीलगाय, 2 बाघ, 4 ईगल, 4 ब्राउन उल्लू,
1: तो आप
0: ये
1: दिन रात यहाँ जी कितनी मेहनत करो तो मतलब आप में थकान महसूस नहीं हुआ बिल्कुल भी?
0: काम नहीं। जिस दिन अगर काम कोई पर्यावरण के प्रति काम नहीं किया, उस दिन थकान महसूस होगी, उदास फील होगा। आप कुछ नहीं किया प्रकृति के लिए, आज दिन खाली जा रहा है।
1: अच्छा, मतलब आप जीवन का उद्देश्य एक ही
0: हर
1: है कि
0: सांस,
1: प्रकृति संरक्षण
0: हर
1: करना।
0: सांस प्रकृति को समर्पित है, और लास्ट चल सकूंगा तो पर्यावरण के लिए जीऊंगा।
1: बिल्कुल
0: और
1: नरपत जी, देखो एक चीज और आपके बारे में सुना कि शादी रमाई जी का जब बाराती अगर आया तो आप माने पौधा बांटे तो एक बड़ी अनोखी पहली, तो इस बारे में कुछ बताओ।
0: आपको पता है, आज के टाइम में राजस्थान में दहेज प्रथा के प्रति बहन बेटियों को कितना प्रताड़ित किया जाता है, कितनी हत्या होती है, न जाने कितने उनको सताया जाता है। लेकिन मेरी बहन मीना को दहेज में मैंने पौधे दिए, मेरी भतीजी अंशा कौर को दहेज में पौधे दिए। अभी 20 अप्रैल को हाल में मेरी भतीजी अंजू की शादी हुई थी, अंजू को मैंने 501

0: परिणी दी।
1: अच्छा
0: हमने बोला स्वीकार क्या, आप अच्छी पहल कर रहे हो, हम खुद को स्वीकार नहीं है, हमें दहेज दहेज नहीं चाहिए। इस दहेज को बंद करके ना देके के सभी बारातियों को, मेहमानों को दहेज के रूप में ये पहुंचा देना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारे राजपूत समाज के अंदर, हमारे 25वें राजस्थान में, हमारे 25वें राजस्थान जैसे बहुत कुछ जातियां होती है, उनको लिए ऐसी चीज बहुत चैलेंज होता है कि आपको दहेज को देना होता है। जैसे मैंने इस प्रथा को बंद करने के लिए एक अलग मुहिम को किया, जैसे अंजू को दिया तो उन्होंने सामने वाले उन्होंने स्वीकार किया और हमारे स्वीकार किया। कोई भी काम करने के लिए शुरुआत में बाधाएं आती है, बहुत कुछ समाज का सुनना पड़ता है, ताने भी देते लोग, लेकिन अगर अगर अपना लक्ष्य परफेक्ट है ना, तो
1: बिल्कुल
0: लास्ट में वही लोग अपने साथ खड़े जाएंगे, बंदे ने अच्छा काम किया है, ये हमारा भाई है, हमारे मेरे काका का लड़का है, ये हमारे गांव का बंदा है, वही लोग कहेंगे। लेकिन एक कोई भी काम के लिए पहल करनी पड़ती है अपने को, शुरुआत में उस पहल के लिए खूब सारी बाधाएं आएगी, खूब सारे ताने आएंगे, लेकिन अगर अपना केंद्र परफेक्ट है लक्ष्य, तो सब कुछ सही होगा।
1: बिल्कुल नरपत जी, आप जी को यहाँ जंगड़ा में इतना घुमाओ, आपका सुपक्षारो भी मतलब सहायता करो, और तो कभी आप रस आगे भी कोई इसी चोट या घायल या कुछ इसको नुकसान हो आप रहे भी।
0: कुछ नहीं है, भगवान की मेहरबान से 5 सालों से मैं निःशुल्क बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा में स्नेक रेस्क्यू कर रहा हूँ, कोई कुछ नहीं हुआ अपने साथ। तो बाकी लोग बिजनेस चलाते हैं, पैसे लेते हैं, मैं फ्री ऑफ चार्ज रेस्क्यू करता हूँ, रेस्क्यू करता हूँ, उसका चार्ज लेता हूँ। आप मेरे जलकुंड में पानी की टंकी चलवा दो, हमें पैसे नहीं चाहिए, बस जीव बच रहा है और आपके हाथों से धर्म भी हो रहा है।
1: बिल्कुल, बहुत ही सुंदर विचार है देखो आप रानरपत जी। तो आभार, आपने रेडियो रे द्वारा बहुत सारा लोग जी का है सुन रिया है, तो आज विश्व पर्यावरण दिवस पर आप कहीं कहना चाहोगे श्रोताओं ने।
0: मेरा एक ही सलोग है, लोग नारियल का पानी पी के फेंक देते हैं, जिस तरह लोग कचरा उठाते हैं उससे मैं कटे कटा लेके घूमता हूँ, उनको इकट्ठा करता हूँ। कई लोग कहते हैं ये कचरा बीनने वाला, कई लोग कहते ये रील बना रहा, कई लोग कहते ये दिखावटी कर रहा है, लेकिन मुझे उस कचरे में सिर्फ पक्षियों का बसेरा दिखता है, छोटे पक्षियों की जिंदगी दिखती है मुझे उसमें। तो मैं 5 सालों से रेगुलर कर रहा हूँ
1: बिल्कुल
0: गोरैया पक्षी संरक्षण के लिए, जो गोरैया पक्षी सिर्फ 20 दिनों के लिए उसको घोंसला बनाने अंडा देने के लिए टाइमिंग लगता है, तो वो गोरैया पक्षी के लिए मुझे अच्छा लगता है और अच्छा परिणाम आता है। मैं हर साल मिट्टी के 500 परिंदे, 2500 परिंदे लगाता हूँ, 2500 मिट्टी के घोंसले लगाता हूँ जी। और साथ ही ध्यान रखता है, संदेश दे रहा हूँ, जो नारियल लगा आप अगर घोंसला लगा रहे हो नहीं, थोड़ा मुंह कटिंग करके दे देते हो जैसे नारियल बेचने वाला, थोड़ा मुंह उसका और थोड़ा बड़ा कर ले ताकि पक्षी आने जाने में आसानी हो। अगर 20 दिन में कितना सिकुड़ेगा, थोड़ा सिकुड़ जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जी।
1: बिल्कुल नरपत जी, आप बातचीत कर कुछ सीखे हैं, बहुत कुछ समझ में भी आयो, बहुत कुछ जाना कि जब संकल्प इंसान बड़ो हुए तो रास्ते कठिनाई जिकी है वह एक दिन प्रेरणा बन जाए। और ये बात रो आप सबसे बड़ा उदाहरण हो कि जीवन में अगर व्यक्ति कुछ सोच लेवे कि मैंने वो काम करना है तो वो जीवन में पीछे नहीं मुड़े कभी भी, और वो आपके जीवन जिकी यात्रा जिकी है वो आगे बढ़ते ही जाए अपनी यात्रा में।
0: सर दीदी क्या होगा, मैं 20% विकलांग हूँ, एक टांग 38 टांके आए हुए, घुटना पूरा टूटा हुआ, नीचे पैर पंजे के पास टूटा हुआ है, कमर के पास टांके आए हुए है, डिस्क प्रॉब्लम है, फिर भी मैं रुक नहीं रहा हूँ।
1: बिल्कुल, आपरे जज्बे ने बहुत बड़ो कहवे ने सलाम है कि आपरे इतनी सारी समस्या होने रे बावजूद भी आज भी आप सतत आपरी यात्रा है जी की जारी रख रखे हो और आप पीछे नहीं हटे हो, और बहुत बड़ी बात है आप कहवे ने कि एक समाज में बहुत बड़ा उदाहरण हो, शायद इन्हीं वास्ते आपने ग्रीन मैन जी की उपाधि है वह मिल चुकी है। तो आज आकाशवाणी जोधपुर लिए आप समय निकालो, इतनी अच्छी बेहतरीन जानकारी दी, इन लिए आकाशवाणी जोधपुर की तरफ से आपरो नरपत सिंह जी बहुत बहुत आभार है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, और आकाशवाणी जोधपुर पूरी टीम का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरी फोन के माध्यम से इस संदेश को आम जन तक पहुँचाने का आपने कोशिश की है, उसके लिए बहुत बहुत पुनः मैं पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहता हूँ।
1: बिल्कुल, आपरो भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया।
2: अवार आप सुनी पर्यावरण संरक्षण में आपरे अनूठे योगदान रे कारण रेगिस्तान रा ग्रीन मैन कया जावन वाला नरपत सिंह राजपुरोहित सु आराधना जोशी री फोन माथे बातचीत।

0: तो प्रकृति री आपा बात करा तो प्रकृति में आपा बताई दिया कि जिन तरीके से हर एक घटक जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी हुए, और राजस्थान री धरती तो सदियां सु ही प्रकृति रो सम्मान और संरक्षण री मिसाल रही है। तो अठे वन संरक्षण कोई नई बात को नहीं, आपने लोक जीवन में रुख ने हमेशा सुई देवता समान पूजो जावे है। ज्या खेजड़ी है, पीपल है, बरगद है, नीम है, ए छावा ही कौन देवे, बल्कि आपनी संस्कृति रो एक अहम हिस्सो भी रहो है। ज्या खेजड़ी तले गोगा जी रा थान, हर गांव में बरगद रो एक गोल गट्टो हो तो हो, और पीपल री पूजा और नीम रा दातुन गांव में लोगारे जीवन रो हमेशा सु एक हिस्सो सो रहो है।
1: बिल्कुल शीतल की आपने जी की रीति रिवाज का है वह पर्यावरण संरक्षण से जुड़ोड़ा है। जी आप पुरुषोत्तम माह चल रहे थे, इन माह में भी आप देखो अपने जी की सखियाँ हैं, जलदान है, पक्षियाँ वास्ते मतलब पक्षियाँ भी सेवा करी है, परिंडा लगा रही है, दाना पानी वास्ते व्यवस्था करी, पेड़ पूजा री आप पूजा कर ही रही हैं, जब पिंपल री पूजा पुरुषोत्तम मास में करा, और बैसाख में करी जाए तुलसी री आप रोजे
0: रोजी ने
1: दीपक
0: पूजा
1: करना,
0: करें।
1: केले री आप पूजा करा, प्याऊ लगवाना है, कुंवारी पूजा करनी, मतलब नदी तालाब री पूजा करनी, मतलब इधर सागे सागे आप देखो एक जिया जेठवा अजूनो कहवा जेठ अजूनो, तो इनमें भी कहीं है कि 33 बर्तन में पानी भरना हुआ भाई, 33 बर्तन मिट्टी रहा तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 5 मिट्टी रख लो, बाकी आप बर्तन भाई स्टील रहा या बाल्टी है वह आपने श्रद्धा अनुसार आप छोटा मटका भी ले सको, तो इरो भी को उद्यापन में इनमें 33 बर्तन ले पर पानी उभर, और सागे पंखियाँ जिकी है वे दे जे सासू है, नणंद है, जेठ है, जेठानी और जेठू तीन बिर बाद अगर जिका बच जावे वे जिका जरूरतमंद लोग वे बाने बांटे जे, तो अपने ये जगह रीति रिवाज है इसको अपन देखो जल संरक्षण भी हो गयो और लोगों की प्यास बुझाना भी हो गयो, और एक आ भी हो गया कि मानव सेवा जी धर्म जिको आप कहवा वो भी हो गयो।
0: बिल्कुल।
1: और
0: और आपने अठे देखो समाज में वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण री परंपरा आप बताइए ज्यां चलती आ रही है, तो राजस्थान का कई गांव में आज भी ओरन और देव वन री भी परंपरा है, जटे पेड़ काटनो और जीव जिनावरा ने नुकसान पहुंचानो बिल्कुल ही मना कराया करे है। पक्षियां वास्ते परिंडा तो आपा जो है बनावा ही हाँ गर्मिया रे मायने, और अपना जगह बड़ा बड़ेरा होता नहीं वह भी शुरुआत हुई जो है भाई पक्षियां ने चुग्गो डालनो है जको वह अपनो धर्म मानता है, और टाबरा ने भी यही संस्कार अपने अठे
1: बिल्कुल
0: दिया
1: शीतल,
0: जावे
1: आपा
0: बचपन
1: छोटा
0: सो ही।
1: जने याद वेला अपन ने साके लेट जाना था, अपना बुजुर्ग अपन दादा दादी पानी में मतलब लोटो पानी रो और सागे कीड़ी नगरो जहाँ पर आपा मतलब कीड़ी नगरो सींच रहा था, और बिर बाद अपन ने यहाँ बहुत अच्छा लागत तो कि रोज आपा खुद ही चला जाता, तो ऐज का संस्कार जिका है अपन बचपन से ही पड़ोड़ा है, तो आने वाली पीढ़ी ने भी ऐसा चीजें जिकी अपन सिखावनी जरूरी है। और जब आप बात करिए भी राजस्थान री, तो राजस्थान में देखो वन ओढ़ाणी भी हुआ करे, जिके मैं जब आप भात भरण न जावा तो भी जे भी गांव में आप घुसा तो घुसते सबसे पहला कहीं करे जिक्का भी खेजड़ी हो गई या कोई भी कांकड़ रो पेड़ हो गया कुछ भी है, तो बड़े आप जहाँ पर आप चूनड़ी है जिकी ओढ़ावा, और फिर भी बाद आप बैन ने ओढ़ावा, तो ये मतलब वही है कि भाई बैन ने ओढ़ाई तो बाबू जी को वृक्ष जो है वो बैन रे समान है,

0: अपन ऐठे राजस्थान में आराधना जी कहबत है कि जल थोड़ो ने घणो, कहने रो मतलब है अपनी मरुभूमि में रहने वाला ने पानी की कीमत खूब समझ आवे, क्योंकि पानी अठे भले ही कम होवे पर प्रेम ने और सत्कार में कोई कमी कोनी।
1: बिल्कुल सही बात है। और इन वास्ते देखो, वंदे गंगा जल संरक्षण जो जन अभियान जो है 25 मई से लेर आज अपन 5 जून तक है जो चल रही है। और इनमें भी वही है कि जल संकट जो है मुक्त मुक्ति हो जावे और मतलब पानी की समस्या वह खत्म हो जाए। इन वास्ते बहुत बड़ो आंदोलन है जो शुरू किया गया। और सागे सागे तालाब कुआ बावड़ियाँ और पारंपरिक जगह जल स्रोत है व्यारी सफाई करना भी इरमाय शामिल हो।
0: बिल्कुल। और राजस्थान में जो है जल री कमी रे कारण बरसात री एक एक बूंद सहेजन खातर हमेशा सुई अठे जो है प्रयास करता ही रहा है लोग। जोड़ है, बावड़ी है, कुंड है, टांका है, नाड़ी, झालरार तालाब खाली जल स्रोत ही कोनी, अठेरी लोक संस्कृति और परंपरा रा प्रतीक भी है। गाँव में तालाब भरे तो लोग गीत गाया जावे, जल स्रोतारी सफाई भी जो है लोग मिलकर करया करे है। और बरसात से पहले कई जगह बावड़ी और तालाबारी पूजा और सफाई करनो आज भी परंपरा मानी जावे है। और जल पूजन अठारह त्योहार और उत्सवारो तो हिस्सो रहो ही है। और खेती करता किसान पानी री बूंद बूंद री कीमत जो है जाने है। ई वास्ते ही बरसात रे जद टाइम माते हो जावे ईसु बड़ी बात वारे वास्ते और की हो भी नहीं सके है।
1: और अपन जो जल संरक्षण में सखियाँ जो को कहवे नहीं हिस्सों है वो बहुत गहरो रियोड है, जहाँ गायत्री देवी यादव है, अमला रुइया है जन वाटर मदर के

0: गायत्री शर्मा है जिका बावड़ी रह संरक्षण करता है, लीला खातून है जिका फलोदी रे खने कानासर गांव है, बटे जल सहेलियां मतलब खूब सारी सहेलियां बन इकट्ठी कर परा बे बठेरो जिको पानी रो जिको कमी है बिने दूर करी बठेरी जनाडी है तालाब है पूरा वापस से पुनरुद्धार करो, तो वीर नाम ही दे दियो जल सहेलियां। तो कितनी सुंदर बात है। और जी अभी आप बोला कि गीत गांव की सखियां जी की है बे कई कितनी सा शीतल जी का मैं मतलब गीत में या कहे कि भाई जी को हे इंद्र राजा तू बरस जा थोड़ो मारे पीरे बरसे थोड़ो मारे सासरे में बरसे थोड़ो मारे भाई वास्ते बरसे कि मारा भाई जब खेत में काम करे तो बड़े चौकी फसल हुए मैं आवा बैठे तो माने भाई थोड़ो सो कहवे नहीं कि बीज ले रहा तो बे बोवा मतलब अपने गीतार में भी पर्यावरण संरक्षण की इतनी अच्छी अच्छी बातें की ओड़ी है और कहावत तो खैर कितनी सारी है।
1: बिल्कुल। और अपने अठे पर्या जल रे वास्ते तो कहबत है ही है, साथे साथे देखो पर्यावरण संरक्षण रे वास्ते भी अपने अठे कहबत है कि सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जाए। कहने रो मतलब है कि अगर आपने एक पेड़ बचाने खातर आप शीश भी है जो कटानो पड़े तो भी वो सस्तो आप जो है सस्तो जानो। और ई वास्ते ही तो अपने अठे जो है अमृता देवी जो है वो खेजड़ी ने बचान खातर जो है वह और 363 जगह लोग है वह अपना प्राण निछावर कर दिया और आ बात आज ताई भी जो है याद करी जावे है।
0: बिल्कुल अपन देखो गोरा देवी है बाने में अपन नहीं भूल सका। और जी हाँ अपन ने सखिया मारना मांडे शीतल तो भी मारना में आप देखो कि मोर बिल्ली शेर कोयल पेड़ पौधा अन सब डिजाइन है तो यूं पता चले कि अपन सखिया रे मन में पर्यावरण के प्रति कितना प्रेम है।

0: तो शीतल जी, हाँ अभी आप बात कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण की, तो देखो इसमें ध्वनि प्रदूषण भी शामिल है, वायु प्रदूषण भी है, और आपा जटक कटी घूमन न जावा तो वो भी इसमें अपारो कठिन कटे योगदान रहे कि ध्वनि प्रदूषण रहे कारण आपा भी ना खराब कर रहे हैं, वायु ने खराब कर रहे हैं कि गाड़िया वाड़िया लेट जावा घूमन ने खूब, आपा पैदल तो चला ही कौन एकदम, पैदल चलना तो छूट ही गयो। और खासकर अगर बात करें कि एक घर में आप देखो तीन तीन चार चार अपन वाहन मिले, तो अपन आप कोशिश करनी है कि वाहन रो इस्तेमाल है जो को कम करा और साइकिल रो इस्तेमाल है जो को थोड़ा ज्यादा करा।
1: बिल्कुल, और बिल्कुल अब आप बताए जो हर घर में तो अब आजकल हो ही गया है, कोई ना कोई वाहन तो आपने मिल जाया करे, तो इस साधन आजकल जरूरी भी हो गया है भाई आपने सुविधा रे वास्ते है, पर साथ ही साथ वायु और ध्वनि ने भी प्रदूषित करे है।

0: તો એ વાસ્તે આપણે કઈ ચીજોનું ધ્યાન ભી રાખણું હોય, જ્યાં કઈ બાર હે કે યાતાયાત્રા નિયમ આપણા પાલન, ભાઈ હેલ્મેટ તો લગા લેવા, લેકિન રાતારાતરા નિયમ એ ભી તો હે કે મતલબ અગર આપને સિગ્નલ જો હે બંધ હે તો જોર જોર શું આપને બિના મતલબ ક્યું આપને જોર જોર શું હે જો પ્રેશર હોર્ન બજાવવાનું હે, યા જોર જોર શું આપ જો હે બિના મતલબ કોઈ આગે હે ઈ નહીં તો ઈ કઈ કઈ દેખા કરું મેં દેખું જબરદસ્તી
1: બિના હા,
0: ટી ટી
1: और वो
0: બજાતા ઈ
1: तेज
0: રહે.
1: जगह साउंड में गीत जिका
0: हाँ
1: चाले
0: वे बजावे.
1: एकदम, मतलब डीजे टाइप रा गीत वे, अपन समझ में भी कोनी आवे और बहुत धूम धाम धूम। तो इनसे कहीं हुए कि कोई व्यक्ति अगर पीछे हॉर्न बजा रही हो कि भाई तू साइड दे दे, तो भी सामने वाले टैक्सी वाले ने पता ही कौन चाल रही हो
0: बिल्कुल.
1: कि मैंने कोई साइड होने रो भी कह रही हो।
0: और कोई बाइक चलावे वे के साइलेंसर हटा दे तो आप
1: हाँ
0: देखा करो बहुत ही जोर जोर भट भट रही आवाज
1: हाँ
0: जो है वे बाइक सु भी आवे. तो ए जकी चीज़ है इतनी तेज ध्वनि पैदा करे जिससे जो है पक्षियों ने तो बहुत ही ज्यादा जो है डर भी लग गया करे और कई बार तो हमारी मृत्यु भी हो जाया करे इतनी खतरनाक आवाज हुए. तो ए आवाज इतनी ज्यादा तेज भी नहीं होनी है कि अपने जो है नुकसान पहुंचे, ईरो आपने ध्यान रखना है. साथ ही साथ जो है आपकी गाड़िया री मरम्मत जो है आप सही टाइम माते करोला तो वायु प्रदूषण भी कम हुआ है
1: बिल्कुल।
0: और गाड़ी री जांच भी जो है समय समय पर करानी जरूरी होया करे है, इसु भी आप वायु प्रदूषण ने कम कर सको.
1: और एक देखो, अपने घर में अपने सखियां जी की है, कचरो इकट्ठो करें तो गीलो कचरो और सूखो कचरो अलग अलग रखे तो फायदो। सूखो कचरे से आप घर में खाद बना सका। अब जी आप बार घर में आप आम है, मतीरे वगैरह सब खा रिया, तो आना जगह बीज वगैरह है तो आरा भी आप उपयोग कर सका, आना छिलका जगह है बारा उपयोग कर सका। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिकर आप खुद ही उपयोग करा तो ज्यादा सही रहा। आप बारह फेंक देवा तो कोई मतलब कोनी। या फिर अपना जगह जिनावर है व्यार वास्ते कुंडी राख कर बा में आप डाल दो तो जिनावर खा लेवे। तो बिसु देखो जिनावर पेट भी भर जावे और आपा के नी वातावरण है वो भी शुद्ध रहे। और अगर आप घूमने जा रहे हो तो एक काम और भी कर सका कि जिका अपना घर में शीतल फल वगैरह आप ले रहा हूँ, जहाँ जामुन री गुटलियाँ होगी, आम री गुटलियाँ होगी, कुछ तरह का बीज जिका है बारी, आप छोटे छोटे से बोल बना लो मैं तो कुछ भी गुण करना। आप गोबर और क्या नाम है थोड़ी सी मिट्टी लेपरा और बना पानी सू मतलब छोटा घोड़ा बना लो भी में बीज डाल दो और मतलब कुछ दिन जैसे 42 घंटा लगभग बना सुखा लेना चाहिए। और आप घूमने जा रहे हो भाई घोड़ा आप सागे ले जाओ, आप कठे भी कोई भी जगह जो कि खुला स्थान देख रहे हो या सड़क के किनारे आप डाल दो, जब बारिश आवेला तो बड़े अपने आप ही है जिका बटे धीरे धीरे पेड़ उग जावेला।
0: ये तो
1: तो वो
0: बहुत ही
1: बोलो
0: अच्छी
1: बहुत
0: बात बताया.
1: सरल है। और इनरे से आगे देखो आप पत्तल रो उपयोग भी करा शीतल तो भी अपने फायदा है कि आप किटी पार्टी कर रही हैं, घूमने जा रही हैं या घर में मेहमान आ रही है, आप पत्तल रो उपयोग करो तो इसो एक तो व्यवसाय भी बढ़ेला, पेड़ पौधा लगाने भी चाह है जिकी ज्यादा रहेला और जिका पत्ता जिका बच जावेला पान आप जमीन में खोट गाड़ सको हो।
0: बिल्कुल ये छोटी छोटी बात ध्यान रख रहे आप है जगह प्रकृति रे वास्ते किन की काम जरूर कर सका. हाँ.

0: तो शीतल, आज रो जो विश्व पर्यावरण दिवस पर आपण जो कार्यक्रम प्रस्तुत करो, यो उद्देश्य वही हो कि आप सब मिल पर प्रकृति रो संरक्षण जो करा, केवल एक व्यक्ति रही है जिकी आज जिम्मेवारी नहीं है। तो आज इन कार्यक्रम में आप सके ही दोस्त सखियाँ शीतल राठौड़, आराधना जोशी, कंसोल पर आपने गीत सुना रहा हाँ मेघा गोट, ट्रांसमिशन सु सहयोग रियो, एचपीटी पर हा कैलाश चंद्र सोलंकी, दिलीप सिंह परमार, एफएम पर प्रेम किशोर सेन, प्रकाश पामार, और कंट्रोल रूम सु आप सका सुनील जयपाल।
1: और इन कार्यक्रम की प्रस्तुति ही राजेश लाम रोडरी और संयोजन हो मनीष सोलंकी रो। तो इन रसाते ही आपरी दोनों सखिया ने दिराओ सीख, चाला
0: चाला राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

0: अभी ग्रामीण महिलाएं सुन रही थी कार्यक्रम गणगौर। ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। दिन के 2:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और

0: प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदम द्वीपों पर बहुउद्देश्य जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
1: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और ATM में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन एसोचैम ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉ जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जनसंबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
3: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय

0: मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ मां के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6,40,00,000 पौधे लगाए गए हैं।
1: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ में जवानों ने लगभग 6,40,00,000 वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40,00,000 से 60,00,000 वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2 करोड़ से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉ मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
2: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे यस एंड माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
3: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरण संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमेरिका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
4: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को भी स्टॉल लगा रहे हैं। लोकल फॉर भोकली है और दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जनभागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से

दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे।

0: हाँ जी, वो दिन भी क्या दिन थे, वाकई वो दिन बहुत ही खूबसूरत होता है। जी हाँ, बारिशों का जो दौर है वो आ चुका है। और दोस्तों, बरसात का मौसम हो या आसमान में बिजली चमके, ये नज़ारा कुछ अलग होता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया इस बात पे कि बिजली की चमक हमें पहले दिखाई देती है और बादलों की जो गरज है वो कुछ सेकंड बाद?
1: बिल्कुल, और इसका कारण यही है कि जब लाइटनिंग होती है उसी समय लाइट और साउंड दोनों पैदा होते हैं, लेकिन लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है इसलिए वो तुरंत हमारी आंखों तक पहुंच जाती है, और साउंड की स्पीड कम होती है इसलिए जो बिजली है उसकी आवाज़ कुछ सेकंड्स बाद हमें सुनाई देती है।
0: बिल्कुल डॉली, अगर 3 सेकंड का अगर डिफरेंस होता है तो वो बिजली किलोमीटर दूर तक गिरती है, और 5 सेकंड का अगर जो डिस्टेंस होता है तो लगभग 2 किलोमीटर के आसपास हो सकती है।
1: बिल्कुल, और यही वो टेक्निक है जिसका यूज़ साइंटिस्ट और वेदर एक्सपर्ट्स भी करते हैं ये सारी चीज़ें पता लगाने में। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। अभी सुनते हैं म्यूजिकल ट्रैक।

0: कुछ सफ़र गीतों के साथ आसान हो जाते हैं और कुछ रिश्ते यादों में भी खास हो जाते हैं और कुछ शामें यूं ही मुस्कुराते हुए आती है दिल के बहुत पास। तो दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त, मैं हूं आप लोगों के साथ आपका रेडियो दोस्त नितिश, और मेरे साथ
1: आपकी रेडियो हम सफर डॉली। आज का हमारा ये प्रोग्राम और हमारी प्यारी प्यारी सी बातें और गानों का सफर बस यहीं तक।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं राज्य के विकास को गति देंगी और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होंगी। श्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल सूरत की प्रशंसा की।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रही है तथा भारत भी इसमें सक्रिय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: इससे पहले सूरत में प्रधानमंत्री ने हजीरा में वर्तमान औद्योगिक तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आज दमण भी जाएंगे, जहां वे लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ये परियोजना अंतिम चरण में है और अगले वर्ष सीमा सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल की तैनाती वाले 7 से 8 संवेदनशील क्षेत्रों में इसका प्रायोगिक चरण शुरू किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस नए केंद्र से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम पूर्वानुमान सेवाओं को मजबूती मिलेगी। श्री सिंह ने कहा कि सटीक और समय पर मौसम पूर्वानुमान से कृषि, विमानन, पर्यटन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा। असम मंत्रिपरिषद का आज विस्तार किया गया। गुवाहाटी में आयोजित समारोह में 12 नए मंत्रियों ने

शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने इस अवसर पर नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के बाद असम मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन 31 जुलाई तक किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कार्यक्रम विवरण में हम जानेंगे हमारी आज की और कल की सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय।

आइए जानते हैं हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। आज रात 10 बजे आप सुनेंगे श्रोताओं के ईमेल और पत्रों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन चाहे गीत। आज शाम 7 बजे आप सुन सकते हैं किसान श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल और शाम 7:30 पर सीमा डेरी गूंज।

कल दोपहर 1:05 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम कृषि जगत और दोपहर 1:15 पर आप सुन सकते हैं महिला श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम नारी वाटिका।

कल शाम 5 बजे आप सुन सकते हैं कार्यक्रम युववाणी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, प्रस्तुत है देशगान।

0: निरूपितवान्। आकाशवाण्या सह सम्भाषमाणः डॉक्टर मुरुगनः नागरिकेभ्यः आह्वानं कृतवान् यत् ते पर्यावरणस्य रक्षणस्य प्रतिज्ञां कुर्वन्तु। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन उक्तं यत् आगामिनोः द्वित्री दिवसयोः मध्ये मध्य अरब सागरस्य केषुचित् अधिकेषु भागेषु समग्रेपि गोवा प्रदेशे महाराष्ट्रस्य आन्ध्रप्रदेशस्य कर्नाटकस्य च केषुचित् भागेषु तमिलनाडु राज्यस्य अवशिष्टेषु भागेषु तथा पूर्वोत्तर राज्यानां केषुचित् भागेषु दक्षिण पश्चिम प्रावृतः आगमनाय परिस्थितयः अनुकूलाः सन्ति। पुरुषाणां अष्टादश वयस्यः एशिया कप हॉकी प्रतियोगितायाः उपान्त्य स्पर्धायां भारतेन पाकिस्तान दलं 5-3 अंक अंतरालेन पराजितम्। जापान इदं अपरतः महिलानां अंडर 18 एशिया कप प्रतियोगितायाः उपान्त्य स्पर्धायां चीन देशेन भारतीय दलं पराजितम्। इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अब आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिले की चिट्ठी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार क्रमशः रिले किए जाएंगे।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। आरबीआई ने रेपो दर में कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे 5.25% पर यथावत रखा। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देशभर में पौधरोपण और वितरण तथा जागरूकता कार्यक्रम हुए। हरियाली बढ़ाने और प्रकृति बचाने का संदेश दिया गया। प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां तेज, कई जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी। और प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए जोधपुर, नागौर और किशनगढ़ में छापेमारी की।

समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है और इसे 5.25% पर यथावत रखा है। स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा गया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि नीतिगत रुख तटस्थ रखा गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत बाहरी झटकों का न्यूनतम प्रभाव के साथ सामना करने की स्थिति में है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि घरेलू आर्थिक गतिविधियां काफी हद तक स्थिर बनी हुई हैं। मौद्रिक नीति समिति आगे के फैसलों में आंकड़ों, आपूर्ति दबावों और आर्थिक घटनाक्रम पर नजर रखेगी। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। आरबीआई ने अनिवासी भारतीयों, भारत के प्रवासी नागरिकों और अन्य पात्र विदेशी निवेशकों के लिए इक्विटी बाजारों में निवेश के अवसरों को भी बढ़ाया है। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और एटीएम में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इस पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और इस तरह की कमी को तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी नीरज डांगी ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। विधानसभा परिसर में निर्वाचन अधिकारी भारत भूषण शर्मा के समक्ष उन्होंने नामांकन पेश किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस के मुख्य सचेतक रफीक खान सहित पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। पार्टी ने श्री डांगी की उम्मीदवारी को सामाजिक प्रतिनिधित्व और संसदीय अनुभव के प्रति विश्वास का प्रतीक बताया है। उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को देश का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह स्थान

0: आर्द्र भूमि पक्षियों की विविधता से समृद्ध है, साथ ही कई तरह के प्रवासी और स्थानीय पक्षियों का आशियाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घोषणा पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि ये जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के साथ ही हरित भविष्य के लिए सहायक है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस उपलब्धि को इकोलॉजिकल संरक्षण की दिशा में अहम बताया है। उन्होंने कहा कि पारिस्थितिकी संतुलन के लिए वेटलैंड, ग्रासलैंड और वुडलैंड तीनों आवश्यक हैं।
1: मैं हमेशा हमारे वन विभाग में भी जब चर्चा करते हैं और लोगों को भी पर्यावरण की दृष्टि से कहना चाहता हूँ, तीनों महत्वपूर्ण होती हैं। वेटलैंड भी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि हमारी आसपास की झीलें हमारी जमीन में नमी बना के रखती है, पक्षियों को आसरा देती है, और अगर एक बड़े शहर में एक अच्छी झील हो तो लोगों को सुकून देती है, घूमने की जगह देती है। झीलें आप देखो कितने लोग घूमने आते हैं, तो हमें इसके जो कैचमेंट एरियाज हैं सभी लोगों को उसको बचाना चाहिए। जितना वेटलैंड महत्वपूर्ण होता है उतना ही ग्रासलैंड महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे वेटलैंड भी है, ग्रासलैंड भी है और वुडलैंड ट्री भी है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन इकोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है और इसके संरक्षण के लिए हम लोग काम करते हैं।
0: विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोगों से पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली अपनाने और प्रकृति का संरक्षण करने की अपील की है। आज जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित समारोह में बोलते हुए श्री शर्मा ने सभी नागरिकों से पानी बिजली की बचत करने और राज्य को हरित तथा स्वच्छ बनाने में योगदान देने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इस साल राजस्थान में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रदेशभर में हरियाली बढ़ाने और प्रकृति बचाने के संदेश को लेकर कार्यक्रम रखे गए। अलवर में सशस्त्र सीमा बल की ओर से पौधरोपण और वितरण किया गया। हनुमानगढ़, डीग, सिरोही, नागौर, डूंगरपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू और सवाईमाधोपुर सहित अन्य स्थानों पर विद्यार्थियों और आम लोगों ने पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। भरतपुर में पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली गई। झुंझुनू में पर्यावरण संरक्षण संबंधी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और प्रतियोगिताएं रखी गईं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। तीन दिन की देरी के बाद कल केरलम से मॉनसून का प्रवेश हुआ। इस बीच राज्य में भी प्री मॉनसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। कल शाम से ही कई जिलों में आंधी बारिश का सिलसिला बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार जुलाई के पहले सप्ताह में मॉनसून के राजस्थान पहुंचने के आसार हैं। विभाग ने 7 जून तक कई हिस्सों में आंधी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। आज राज्य के 14 जिलों में ऑरेंज और 8 जिलों में येलो अलर्ट बताया गया है। मौसम में आए बदलाव से जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, बीते 24 घंटों में राज्य के कुछ भागों में गरज और चमक के साथ तेज बरसात हुई। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में 7.5 सेंटीमीटर पानी बरसा। झुंझुनू, हनुमानगढ़, चूरू और राजधानी जयपुर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। तेज अंधड़ से कुछ जगह हादसों की भी खबर है। भरतपुर और भीलवाड़ा में अंधड़ से 2 लोगों की मृत्यु हो गई। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए आज राजस्थान और पंजाब में 7 ठिकानों पर छापेमारी की गई। ईडी की टीमों ने जोधपुर, नागौर और किशनगढ़ में एक साथ कार्रवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में मोबाइल, सिम कार्ड और साइबर अपराध से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पकड़े गए। शुरूआती जांच में सामने आया है कि साइबर अपराधियों के तार विदेशों तक जुड़े हो सकते हैं। ईडी इन ठगों के वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से आज सोमनाथ यात्रा 2026 का शुभारंभ किया गया। प्रदेश में चल रही वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत लगभग 1000 बुजुर्गों को रेल के जरिए सोमनाथ यात्रा पर रवाना किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। मीडिया से बातचीत में देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि इस यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए सभी सुविधाएं निःशुल्क रहेंगी।
2: राजस्थान सरकार ने 1,000 यात्रियों को सोमनाथ महादेव के

0: दर्शन करने के लिए, उनकी भव्यता दिखाने के लिए, उनका इतिहास दिखाने के लिए आज जयपुर से 1000 यात्री ये सोमनाथ महादेव मंदिर के दर्शन, साथ ही साथ में द्वारकाधीश के भी दर्शन होंगे, भेट द्वारका के भी दर्शन होंगे और नागेश्वर महादेव जो ज्योतिर्लिंग है उनके भी दर्शन होंगे। तो इस तरह से 7 दिन का टूर यात्रियों का रहेगा। उसी की सारी व्यवस्था राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग ने की है।
1: अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बीकानेर जिले के लालगढ़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का काम लगभग पूरा हो गया है। करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से इस स्टेशन का कायाकल्प कर यहां आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि स्टेशन के हाईटेक होने से पर्यटन, स्थानीय हस्तशिल्प और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
2: सारे एमिनिटीज हैं पैसेंजर के, उनको मॉडर्नाइज किया गया है, चाहे वो सर्कुलेटिंग एरिया हो, सेपरेट एंट्री सेपरेट एग्जिट हो, चाहे रिटायरिंग रूम्स हो, चाहे वेटिंग हॉल्स हो और चाहे पब्लिक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो, पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो, सभी पैसेंजर से रिलेटेड एमिनिटीज को इसमें नया कर दिया गया है। साथ में जो FOB है उसका भी कार्य लगभग 85% पूरा कर लिया गया है। उसके साथ में एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कि एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, उसका भी पूरा ध्यान रखा गया है, जिसके तहत लगभग 50 किलोवाट सोलर एनर्जी को इस स्टेशन पे इंटीग्रेट किया गया है, जो कि स्टेशन की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
1: पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल ने सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे फर्जी रेलवे भर्ती विज्ञापनों से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मंडल ने इन विज्ञापनों को फर्जी बताते हुए कहा है कि इनके जरिए बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देकर ठगी के प्रयास किए जा सकते हैं। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने कहा है कि भारतीय रेलवे सभी भर्तियां निर्धारित नियमों और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत करता है, निजी माध्यमों से चयन की कोई प्रक्रिया नहीं होती। प्रदेश में इबोला वायरस का संदिग्ध मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। युगांडा से राजस्थान आई एक विदेशी महिला में इस बीमारी से मिलते जुलते लक्षण पाए जाने के बाद उसे जयपुर के RUHS अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिलाओं को विशेष आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। RUHS अस्पताल के अधीक्षक डॉ अनिल गुप्ता ने बताया कि फिलहाल महिला में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। महिला का सैंपल जांच के लिए पुणे की प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। RBI ने रेपो दर में कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे 5.25% पर यथावत रखा। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देशभर में पौधरोपण और वितरण तथा जागरूकता कार्यक्रम हुए। हरियाली बढ़ाने और प्रकृति बचाने का संदेश दिया गया। प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां तेज, कई जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी। और प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए जोधपुर, नागौर और किशनगढ़ में छापेमारी की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से कोटपूतली बहरोड जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आशीष गोयल ने तैयार किया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज जिले में पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज से ही हरियालो राजस्थान अभियान 2026 की शुरुआत हुई। इसके साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान का तीसरा चरण भी शुरू हुआ। वन विभाग की ओर से आज लोगों को पौधे वितरित किए गए। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान भी आज सम्पन्न हुआ। 25 मई को गंगा दशमी से शुरू हुए इस अभियान के दौरान जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और जल स्रोतों की साफ सफाई के कार्य किए गए। अभियान के तहत 577 जल संरचनाओं की सफाई की गई, वहीं 37 की मरम्मत और पुनर्जीवन के काम शुरू किए गए। 237 ग्राम सभाओं सहित अन्य गतिविधियों के माध्यम से जल संरक्षण का संदेश आम जन तक पहुंचाया गया। कोटपुतली नगर परिषद इन दिनों पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोक कल्याण मेले लगाया गया है। 30 जून तक चलने वाले इस मेले में अधिक से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स और रेहड़ी पटरी संचालकों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। साथ ही छोटे व्यवसाय करने वाले वेंडर्स को स्वरोजगार के लिए

0: वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। जिले में पुलिस की ओर से अवैध मोडिफाइड वाहनों के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह ने बताया कि इस दौरान वाहनों की बॉडी में परिवर्तन कर प्रेशन हॉर्न और अवैध रूप से लाल नीली बत्तियां लगाने तथा नंबर प्लेट में बदलाव करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता ने जिले में पड़ रही तेज गर्मी के मद्देनजर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को पीने के पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू बनाए रखने को कहा। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित लोगों के लिए विशेष प्रबंध करने को कहा गया है। जिला कलेक्टर ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिला स्तरीय महिला समाधान समिति, पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र, वन स्टॉप सेंटर और महिला सुरक्षा केंद्र की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। साथ ही जिला कलेक्टर ने नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए बनाए गए जिला स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर समिति की भी बैठक ली। पावटा में नया न्यायालय भवन बनाया जा रहा है। राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने नए भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इसके निर्माण पर 3,29,00,000 रूपये की लागत आएगी। जिले में इन दिनों जनगणना 2027 के तहत मकानों का सर्वे और मकान गणना का काम लगातार जारी है। प्रगणक घर घर जाकर मकानों का सूचीकरण और आवश्यक जानकारी का संकलन कर रहे हैं। जिला कलेक्टर ने नागरिकों से इस काम में सक्रिय सहयोग देने की अपील की है। बीते दिनों राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ग्राम रथ अभियान चलाया गया। इस दौरान राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी मोबाइल वैन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाई गई। साथ ही संध्या चौपाल लगाकर आम जन को सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। ज्ञान भारतम मिशन के तहत इन दिनों जिले के मंदिरों, मठों और निजी संग्रहों में मौजूद प्राचीन पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, संरक्षण और डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर और मिशन के जिला नोडल अधिकारी ने बीते दिनों मिशन के लिए बनाई गई क्रियान्वयन समिति के साथ बैठक की। उन्होंने समिति के सदस्यों को विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, संग्रहालयों और पुस्तकालयों में जाकर पांडुलिपियों के सर्वेक्षण कार्य को पूरी जिम्मेदारी से करने का आह्वान किया। उन्होंने इस काम को प्राथमिकता देते हुए डोर टू डोर सर्वे करने को कहा। जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र तथा नीमराणा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से बहरोड में एमएसएमई प्रोत्साहन जागरूकता कार्यशाला रखी गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य स्थानीय उद्यमियों को राज्य और केंद्र द्वारा चलाई जा रही विभिन्न औद्योगिक प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी प्रदान करना रहा। इससे पहले नीमराणा, घिलोट और शाहजहांपुर औद्योगिक क्षेत्रों के उद्योगों को भी ऐसी कार्यशालाओं के माध्यम से जागरूक किया जा चुका है। इसके साथ ही कोटपूतली बहरोड जिले की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। आरबीआई रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किन्नो, 5.25% राखी ची। विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके आखा देश माए पौधा रोपण, वितरण और जागरूकता कार्यक्रम राखी चिया। हरियाली बधावन और आबो हवा ने बचावन रो संदेश दियो चियो। प्रदेश माए चौमासाओं पहली री हलचल शुरू हुई। कई जिला माए आंधी बारिश रो दौर जारी। और प्रवर्तन निदेशालय ईडी साइबर अपराध री शंका वाला रे खिलाफ जोधपुर, नागौर और किशनगढ़ में छापा मारिया। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किन्नो है। मौद्रिक नीति समिति री समीक्षा बैठक में इनने 5.25% रा लेवल माथे राखण रो फैसलो करी चियो। मीटिंग में स्थायी जमा सुविधा री रेट 5% और सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक रेट 5.5% रा लेवल में थई राखण रो फैसलो करी चियो। चालू माली साल में लगातार दूजी दफा ब्याज री खास दरा में कोई बदलाव नहीं करी चियो। आरबीआई रा गवर्नर संजय मल्होत्रा

0: वाला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा में विपक्ष का नेता टीकाराम जूली, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में कांग्रेस का मुख्य सचेतक रफीक खान समेत कई आला नेता मौजूद हा। कांग्रेस नीरज डांगीरी उम्मीदवारी ने पार्टी रा सामाजिक प्रतिनिधित्व और संसदीय अनुभव रा प्रति भरोसा री निशानी बताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में बलिया रा जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल रे देश री 100वीं रामसर ठौड़ वेवन रा ऐलान माथे खुशी जताई है। माना संदेश में श्री मोदी कहो के ओ जैव विविधता ने बचावण और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखण सागे हरित भविष्य सारू मददगार है। सुरहा ताल में भांत भांत रा प्रवासी और वठेरा परिंदा रो रहवास है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ई उपलब्धि ने पारिस्थितिकी बचावण ओड़ी खास बतायो है। वे कहो के पारिस्थितिकी संतुलन सारू वेटलैंड, ग्रासलैंड और वुडलैंड तीनों जरूरी है।
1: मैं हमेशा हमारे वन विभाग में भी जब चर्चा करते हैं और लोगों को भी पर्यावरण की दृष्टि से कहना चाहता हूं, तीनों महत्वपूर्ण होती हैं। वेटलैंड भी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि हमारी आसपास की झीलें हमारी जमीन में नमी बना के रखती है, पक्षियों को आसरा देती है और अगर एक बड़े शहर में एक अच्छी झील हो तो लोगों को सुकून देती है, घूमने की जगह देती है। झीलें आप देखो कितने लोग घूमने आते हैं, तो हमें इसके जो कैचमेंट एरियाज हैं सभी लोगों को उसको बचाना चाहिए। जितना वेटलैंड महत्वपूर्ण होता है उतना ही ग्रासलैंड महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे वेटलैंड भी है, ग्रासलैंड भी है और वुडलैंड ट्री भी है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन इकोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है और इसके संरक्षण के लिए हम लोग काम करते हैं।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनताओं आबो हवा रे मुजब जीवन रो तरीको अपनावण और धरती ने बचावण री अरज कीनी है। आज विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके जयपुर माए राखी जाए एक कार्यक्रम माए श्री शर्मा जनताओं पानी बिजली री बचत करण सागे राज्य ने हरित और साफ सुथरो बनावण माए योगदान देवण री अपील कीनी। मुख्यमंत्री कहो के एक पेड़ माँ के नाम अभियान रा तहत ई साल प्रदेश माए 10 करोड़ पौधा रोपणो तय करीचियो है। विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके आखर राज्य माए हरियाली बधावण और कुदरत ने बचावण रो संदेश देता थका कार्यक्रम राखी जिया। अलवर माए सशस्त्र सीमा बल री ओर पौधा रोपी जिया और जनता ने पौधा बांटी जिया। हनुमानगढ़, डीग, सिरोही, नागौर, डूंगरपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू और सवाई माधोपुर समेत कई ठोड़ा विद्यार्थी और जनता पौधा रोपिया और पर्यावरण ने बचावण री सोगन लीनी। भरतपुर माए पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली जी। झुंझुनू माए पर्यावरण बचावण जुड़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम और होड़ा राखी जी। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप माना एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। देश माए चौमासारी बिरखा सरू वेवण रा हालात अनुकूल है। केरलम माए चौमासारी बिरखा 3 दिन मोड़ी सरूफी। राज्य माए चौमासाओं पहले री हलचल तेज वे की है। काल सिंजा हुई कई जिला माए आंधी बारिश रो दौर चाल रियो है। मौसम विभाग रे मुजब आवता महीना रा पहला सप्ताह माए राज्य माए चौमासारी बिरखा सरू वेवण रा आसार है। इन बीच 7 जून ताई प्रदेश रा कई हल्का माए आंधी बारिश री संभावना जताई ची है। आज राज्य रा 14 जिला माए ऑरेंज और 8 जिला माए येलो अलर्ट जारी करी चियो है। मौसम माए आया बदलाव तेज गर्मी थोड़ी साता मिली है। हालांकि तेज अंधड़ रे कारण कठे कठे हादसा री खबर है। भरतपुर और भीलवाड़ा माए अंधड़ 2 जना री मौत वे की। प्रवर्तन निदेशालय ईडी री ओर आज राजस्थान और पंजाब माए साइबर अपराधा माए शामिल फेवन री शंका वाला रे खिलाफ 7 ठोड़ा छापा मारी जिया। ईडी री टीमा जोधपुर, नागौर और किशनगढ़ माए एक सागे करी जी कार्रवाई रे दौरान मोटी तादाद माए मोबाइल फोन माए लगन वाली सिम और साइबर अपराध माए काम आवण री शंका वाला इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान पकड़िया।

0: वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना रा तहत करीब 1000 बुजुर्गों ने रेल रे जरिए सोमनाथ री यात्रा कराई जा रही है। इन सारू जयपुर कने दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन आज मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रेलगाड़ी ने हरी झंडी बतार रवाना कीनी। खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका देवस्थान मंत्री जोरा राम कुमावत कहो कि 6 दिन री ई यात्रा में यात्रुआ सारू सगला सुविधा मुफ्त मुहैया कराया जा रहा है।
1: राजस्थान सरकार ने 1000 यात्रियों को सोमनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए, उनकी भव्यता दिखाने के लिए, उनका इतिहास दिखाने के लिए आज जयपुर से 1000 यात्री ये सोमनाथ महादेव मंदिर के दर्शन, साथ ही साथ में द्वारकाधीश के भी दर्शन होंगे, भेट द्वारका के भी दर्शन होंगे और नागेश्वर महादेव जो ज्योतिर्लिंग है उनके भी दर्शन होंगे। तो इस तरह से 7 दिन का टूर यात्रियों का रहेगा। उसी की सारी व्यवस्था राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग ने की है।
0: अमृत भारत स्टेशन योजना रा तहत बीकानेर कने लालगढ़ रेलवे स्टेशन ने और बेहतर बनावन रो करीब 85% काम पूरो वेक्यो है। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि लगभग 20 करोड़ रुपया रा खर्चो वठे नुआ सुविधा विकसित करी चिया है। श्री सुदर्शन बतायो कि इन स्टेशन रे हाईटेक मेवणो सैर सपाटा वठेरा हाथरी कारीगरी रा काम और कारोबारी हलचल ने बढ़ावो मिलन सागे नौकरी धंधा रा मौका ही बधेला।
2: सारे एमिनिटीज हैं पैसेंजर के, उनको मॉडर्नाइज किया गया है, चाहे वो सर्कुलेटिंग एरिया हो, सेपरेट एंट्री सेपरेट एग्जिट हो, चाहे रिटायरिंग रूम्स हो, चाहे वेटिंग हॉल्स हो और चाहे पब्लिक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो, पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो, सभी पैसेंजर से रिलेटेड एमिनिटीज को इसमें नया कर दिया गया है। साथ में जो FOB है उसका भी कार्य लगभग 85% पूरा कर लिया गया है। उसके साथ में एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कि एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, उसका भी पूरा ध्यान रखा गया है, जिसके तहत लगभग 50 किलोवाट सोलर एनर्जी को इस स्टेशन पे इंटीग्रेट किया गया है जो कि स्टेशन की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
0: पश्चिम मध्य रेलवे रो कोटा मंडल रेलवे माय भर्ती रा सोशल मीडिया माथे चाल रिया फर्जी विज्ञापनाओं सावचेत रहन री राय दीनी है। मंडल रा वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन कहो कि रेलवे माय सगली भर्तियां ते नियमा रा तहत साफ कोई सागे करी जावे है और गैर सरकारी जरिया चयन री कोई प्रक्रिया नहीं वे है। प्रदेश में इबोला वायरस री शंका वाला एक मरीज रीठा पड़िया पाछे स्वास्थ्य विभाग सावचेत वेक्यो है। अफ्रीकी देश युगांडा राजस्थान आई एक विदेशी महिला माए ई बीमारी मिलता जुलता लक्षण रीठा पड़िया पाछे माना जयपुर रा RUHS अस्पताल रा विशेष आइसोलेशन वार्ड माए भर्ती कराई ची है। RUHS अस्पताल रा अधीक्षक डॉक्टर अनिल गुप्ता बतायो कि फिलहाल ई महिला माए इबोला संक्रमण री पुष्टि नी हुई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो आज टोंक माए जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड रा AEN और कंप्यूटर ऑपरेटर ने 20,000 रूपये री घूस लेता थका पकड़ लीना। ACB रा एडिशनल SP ऋषिकेश मीणा बतायो कि पकड़ी जिया लोगा माथे शिकायत करण वाला रा घर रो बिजली रो मीटर पाछो देवण और विजिलेंस जांच रपट नी भरण री एवज माए आ रकम मांगण रो आरोप है। ACB कोटा विकास प्राधिकरण माए संविदा रा आधार लाग्योड़ा एक कर्मचारी ने 15,000 रूपया री घूस लेता थका पकड़ लीनो। वा माथे शिकायत करण वाला रा बाप दादा रा घर माए भागीदार लोगा ने लिस्ट माए नाम मांडण सारू घूस मांगण रो आरोप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करिया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 28 जून ने विचार बतावेला। आ इन कार्यक्रम री 135वीं कड़ी वेला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 26 जून ताई राय दे सको हो। आखिर माए खास समाचार एक कर फेर सुन ले रहो। RBI रेपो रेट माए कोई बदलाव नी कीनो, 5.25% राखी ची। विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके आखा देश माए पौधारोपण वितरण जागरूकता कार्यक्रम राखी चिया। प्रदेश माए चौमासाओं पहली री हलचल शुरू हुई, कई जिला माए आंधी बारिश रो दौर जारी। प्रवर्तन निदेशालय साइबर अपराध री शंका वाला रे खिलाफ जोधपुर नागौर और किशनगढ़ माए छापा मारिया। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564

9.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। इस समय शाम के 7 बज रहे हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का प्रोग्राम चौपाल।

गांव ग्वार अर खेत खलियान री बात। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्स। सिंजिया 7 बजिया सुनो ना भूलो आप रो पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल।

लौसा हाजिर है कार्यक्रम सुनन वाला सगड़ा हेतालु श्रोता ने घणे मानसू गुरविंदर बिश्नोईरा राम राम अर नमस्कार।

और अणा सगला घर वाला। तो ईमेल आयो है श्री किशन पवन चौधरी विश्वेंदर मृगेंदर पुष्पेंदर मनीष गोविंद महिमा गांव चापासर सू प्रेम कुमार प्रजापति आदुराम प्रजापत राधा प्रजापति लाछा प्रजापति लीला कुमारी संतोष कुमार कोमल प्रजापति और आणा सगला घर वाला। आगलो कागद है गांव छापला सू मांगीलाल सीताराम सुरेंद्र कुमार खुशबू और विद्या देवी झालावाड़ सू। और कागद आयो है लिखण वाला है हर्षिता रामेश्वर काना सफलता कपिल मीनाक्षी सत्यनारायण मनोहर बाई और प्रभुलाल बागरी। आप सबरी फरमाइश माते सुनो आ रचना। प्यारा।

0: चंद्रकला रेवाड़ अर आना सगड़ा साथी।
1: और कागज आयो है गांव तिवरी सु, लिखियो है वीरेंद्र टाक, बसी नगर सु जितेंद्र टाक, अशोक, पीयूष, भंवरलाल चौधरी, नरपत चौधरी अर आना सगड़ा साथी।
2: और कागज आयो है इंदिरा कॉलोनी महा मंदिर सु, श्याम डागर, राजेंद्र, गोपाल मरिठा, रमेश सांखला, जीतू बाडुलिया, नंदू भाई, वगलू राम गहलोत अर आना घना सारा साथी। बदवासिया सु कृष्णा राम सांसी, पप्पू राम सांसी, कंवर राम सांसी अर विनोद सांसी। व्यास कॉलोनी एयरफोर्स सु चुन्नी देवी मेघवाल, बिंदु मेघवाल, कार्तिक, हिमांशु, विनोद मेघवाल अर आना घराड़ा।
0: और कागज आयो है गाँव फिटकासनी सु, लिखियो है गोविंद बाबल, भागीरथ बाबल, काजोल, मालाराम बाबल, हरी राम, संग्राम राम बाबल, अठे सुई हुकमाराम सिंवर, विष्णु सिंवर और आना सगला साथी। और कागज आयो है रुड़कली सु, लिखियो है अनिल सिंवर और आना साथी। गांव धुंधाड़ा सु गणेश मेघवाल, चंपा मेघवाल, मधुबाला, विवेक अर आना सगड़ा साथ।
2: बिरे सु रतना राम उदेणिया, मेहराम उदेणिया, गुलाब राम अर आनो सगलो परिवार। बदवासिया सु पारसमल खटनवालिया, अशोक खटनवालिया, जयराम अर आना सगला साथी। खारड़ा भारत सिंह सु खरता राम माचरा, भैरा राम, रेखा राम माचरा, उम्मीदा राम, चेतन भोम सिंह अर आना सगला साथी। गांव कंटालिया सु भीखाराम मौर्या, सीता देवी मौर्या, विजय प्रकाश, गोमती, माणकचंद, मंजू देवी, जयेश अर मनीष मौर्या। हिंसर नागौर सु कल्याणमल, प्रभु राम, वंशीलाल, हेमा राम, शोभा राम मौर्या अर आना सगला सच।
0: चातनाडा सु नरेंद्र भाटी, वीणा भाटी, प्रीति भाटी, अठेसुई माणा नियमित श्रोता बाबूलाल मरेठा अर आना सगला दोस्त। आप सबरी फरमाइश माते सुनो आ रचना।

राजस्थानी लोक गीतार लोक भजनारो ओ है फरमाइशी कार्यक्रम और आप रे साथे है आप रो साथी गुरविंदर बिश्नोई। साथिया आप माने ईमेल भेज और आपरा पसंदीदा लोक गीत सुन सको हो। मानी ईमेल अगर आप लिखनी चाहो chopal.jodhpur@gmail.com अंग्रेजी रे छोटा अक्षरा में चौपाल यानी chopal.jodhpur@gmail.com ओ है मानो पतो जिन्हें मुजब आप माने ईमेल भेज सको हो। गांव बेरावास तहसील खिमसर नागौर सु ओ ईमेल आयो है भुट्टाराम मेघवाल सुनील मुकेश भुराराम शोभाराम लादूराम मंजू मोनिका सुरता पूजा और शारदा मेघवाल रो थी। गांव पाबनासर जैसलमेर सु जितेंद्र पंवार गुलाब पंवार तेजपाल नेपाल पंवार पारस पंवार गोविंद पंवार गौतम पंवार और भरत पंवार भोपालगढ़ सु घनश्याम सिंह चौधरी और अंकित चौधरी गांव जेसला तहसील फलोदी सु राजा राम जंवर और आना साथी बाड़मेर सुई नाथुराम कोड़चे माने ईमेल भेजे है। गांव मेलाना सु छेलाराम मेघवाल रविंद्र देवेंद्र अनीता और पुली देवी मेघवाल और कागज माने कन आयो है जोधपुर सु लिखियो है रघुवीर किशोर देवेंद्र सिंह जबर सिंह खींची और रतन सिंह खींची। आप सबरी फरमाइश माते सुनो आ रचना।

साथिया ओहो मानो आज रो फरमाइशी कार्यक्रम झुमको अब कार्यक्रम रो टाइम हो रियो है पूरो तो आपरे साथी गुरविंदर बिश्नोई ने अनुमति दिराओ नमस्कार। गांव ग्वाड़ अर खेत खलियान री बात मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्स सिंजिया 7 बजिया सुनो ना भूलो आप रो पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज।

0: भट गोंडाली मैं आवरी वही तो कौ थे ले नहीं की तुरी
1: नवलोबा राम राम पगे
0: राम राम ए कौ ले नहीं
1: ए नया नया पौधा ले नहीं हूं नवलोबा बार जून रे महीना में जी का लगाणो होवे नी बे
0: आवरी आवरी भाई मैं आज तो देखे
1: हां
0: हूं बारी उबो है मैं के भाई को आज कोई आयो कोनी इनकी के रह नहीं गत्ता गम्मी हो
1: हमें देख लो नवलोबा मारे थैला में गुड़ल मोगरो सदाबहार अपराजिता एर थे क्या हो जी का गेंदा वेंदा हैंग अब बार जून में जी का लागे नी मैं वाला पौधा ले
0: फूल डाल लगे
1: हाँ बढ़िया फूल वाला
0: फूल डाल देखे रूंगड़ा लगाऊ एक तो हुगन जोर आई
1: हाँ
0: एक है जी को क्या पालगोट तो करनी पड़ी
1: है नवलोबा एक नीमन पीपल बड़े ले नहीं मैं क्यों वो भी अपन का ये छाव रहे हो
0: मैं तो कोई फलदार ही लावती ठीक रहती है
1: तो आम आम लावना आम
0: हाँ आंबा हो जाई चीकू हो जाई दाड़म हो जाई
1: और हम क्या हो जाए
0: भाई मीठा मीठा कोई क्या नहीं क्या फल हो ही नहीं तो आप देखो मिन की राजी रह पंख पंखे राजी रही
1: हाची
0: बात है कौन जची हुई है पौधा लाउन वाली
1: अरे नवलोबा देखो यू है की आज अपने विश्व पर्यावरण दिवस है हर साल 5 जून ने मनाया हुआ
0: आपके संसार में
1: ठीक है
0: ठीक ठीक भाई देखे हाँ। हमें धुआं धुपी घणो उगो
1: अरे लकन कोनी मीन का में नवलो हाँ। गाड़ा ले लेन घूमे माइन चार लोगा री सीटरी गाड़ी एक जनो चलावे बताओ यार घर में चार मेंबर है तो चार वास्ते अलग अलग गाड़ी
0: तो कोई हैराम है भाई मातबर है अटकटी गाड़ियां देख
1: अरे गाँव आजकल लर कोनी है
0: अरे हम गाय
1: थे
0: मिन का कहीं है के कोई कह किनी कोई भैसन रहे
1: हाँ।
0: कोई सज नावे तो कह थे तो कह री अंबड़ता रहो अरे कदी अपन ही बैठा ही और वो होश लो
1: तय कंजूस ही रहे हो हमेशा खुद ही नहीं लेना हो दूजा रीज में ही बैठो
0: नहीं मार कौन भाई ये
1: मारे कौन नहीं मारे कौन
0: मार कोई
1: भैया पढ़िया हैंग बस कोरा खोज हम गाल पया
0: जरूरत पड़े गए तो हेलो करते गाड़ी आलो तैयार हो देखे घणो धुआं नहीं करनो घणो है जो कह नहीं भाई देखे कोई नुकसान नहीं करनो
1: लाइट पंखा फालतू नहीं बाड़नार पानी री बर्बादी नहीं करनी नवलो
0: अरे हूं तो मारे भाई थे तू देखे हंसी ओड़ो हालियो
1: हाँ जितना पौधा लेन आई हैंग कपड़ा थैला में लेन आई प्लास्टिक थैला में नहीं लेन आई
0: हाँ तो कह नहीं भाई क्या प्लास्टिक भाई क्या हो बरी कटी गले को
1: बात तो नवलोबा थाने हाची है थे साइकिल में तो जाओ नहीं जन थे कहीं पर्यावरण ने बचा रही हो एक तरह
0: अरे हूँ तो भाई देखा मारे पहला तो पेंडो करता तो पगो करता पाला जावता आवता
1: हाची बात है
0: अपन गांव में बस आवती कोनी आगी आवती उठे जान में कोई सगड़े मत जान उठू बस पकड़ता हमें पद कहू है के हमें आजकल भाई देखे थाना कर्म है इतना हो लिया फटफटिया होगा कह नहीं के चार पीड़ा वाली गाड़ियां होगी
1: हमें तो कौन, कौन
0: है जो बड़ा गाड़ा ने ऊंट में है जो कह नहीं हाथ गाले
1: हाची बात
0: है हम भाई हूँ एक कहूँ है
1: हाँ
0: कह नहीं भाई सहन रहा थे उतरा थे

0: भाकरा में क्या नहीं
1: कर क्या वास्ते गया
0: तीर्थ करने गयो है
1: हेमी
0: चार धाम तीर्थ करिया
1: वो तूपा ना है
0: अरे पहले बात है भाई वो तो कदी गयो उठे है जिको कह नहीं कह रोकड़ा देखिया जिको इतना रोकड़ा नंबर पंदू जी
1: हाँ।
0: अंदर हो उठ कौन दिन बदिया हेड़ो मारो कह नहीं मन राजी हुई हो हाँ
1: और कहीं अपन हट कहीं नवलो बकोरा वे धुड़रा टीला ही देख योड़ा है भट्टा ही देख योड़ा ही वास्ते कट ही जावान चार पेड़ देख लो तो आप गेला हो जाओ राजी हो जाओ इतना पूछो मत ही
0: थे भाई देखे आजकल तो अपन हट ही खासा है जो कह नहीं कि भाई रुकड़िया लागा है
1: हमें हो हमें नवलो हमें जागरूकता बड़ी है जन हो
0: सुनी कर धरती करे पुकार पौधा लगाओ करो श्रृंगार
1: हाँ
0: तावड़ो पड़े तो पंख पंखेरू है बारी छिया चाहिए
1: चून
0: चुगो चाहिए दाव डांडेरी चाहिए नम देखे कुदरत अटे जे मान लो कह नहीं भाई क्या पोने जलम दियो धोरे धरती में
1: हाँ।
0: तो आ तो सोनेरी धरती है अटे
1: हमें नवलोबा देखो अपने सब मोटो काम ओ करनो है कि अबार आ रही हो टाइम मौसम अपने बारिश रो ठीक है अरे बारिश रे पानी ने बचाव ना की करी करन
0: अब अरे टांका भरा नहीं है टांका भरी जा
1: अरे आपा तो भरा हुनन वाला ना क्या हो टांका बनवाओ जन पर बारिश रो पानी सेव करो बीर माई
0: अरे वो तो पंडाला हैंग ही दी टांके में जान की
1: एडो सिस्टम कराओ के पंडाला
0: अरे हूँ कितुरी एक बात हूँ
1: हाँ बताओ
0: गोलियां बनी हमके देखे
1: गोलियां देव तो धपो कौन थे
0: अरे गोलियां कारी
1: कैरी बना लिया मैं
0: हूँ कम करियो कि गोबर में ए निम्बोली है
1: हाँ।
0: ए जामुनाली है
1: हाँ।
0: नेड़ी अड़े है जो कह नहीं के भाई चिकुरा बीज है
1: अच्छी को उर्वरक बनावे जेड़ी खाद जेड़ी
0: अरे गोली देखे एक कटी बेता नहीं हूँ सन दे हूँ क्या
1: हाँ।
0: बेती कटी कोई है जो कह नहीं कह नहीं थोड़ो खा नाग बीज है जो आप ही है जो रूकड़ी उग जाए
1: कोई टूना टोट करी
0: गोली
1: टूना टोट कर देव कर नवलवा मास्टर दिन कब्जा में करा जूनी
0: बोल जाए बोल जाए
1: बोल जाए आवड गोली बढ़ाओ की
0: बात करे हूं कह रहा है कि एक एक कटी है जिसको देखो कि पौधा पुगा उसमें टाइम लागे
1: हाँ
0: अपन कटी देखे गांव में आप भाकरी भाकर है नहीं
1: हाँ
0: उठी नहीं कोई भाकर खुड़ के मैं नहक देनी जो अपने आप उग जी
1: वाह जन
0: ठीक है
1: नवलो बात है मैंने बा गैस री गोली दी थी बा बहुत बढ़िया होती है अच्छी बात
0: बात तो भाई हूँ आप क्या
1: एक गोली ले तो असर हो जाए नवलो बात
0: वाह वाह तो हो रही तो ही
1: अरे
0: हमें मारे यूं करें भाई गीत लो नहीं
1: एक पर्यावरण दुथान थे क्या तो
0: और मुकड़ो गीत लो मन है जो हूँ बजाओ बजाओ तो आया
1: अच्छा ओइज
0: बहुत मन होना भाई
1: लो

0: पर्वतों के पेड़ों पर शाम कर अंधेरा है।
1: हाँ
0: तो मार दे गिड़ भाई की कोनी और हमें यू है कि थे चांदनो करो कुण जलमिया कुण भोत होया और कहू देश समाज दुनिया रे वास्ते में करन गया तो मैंने विगत बार जानकारी दी रहो।
1: तो आप शुरुआत करा नवलोबा, आज जन्मदिन है अपने देश रा सब युवा लड़ाई में सांसद बनिया था नवलोबा 26 वर्ष री आयु में 1998 में।
0: हाँ।
1: और दूजो नवलोबा आज रे दिन में दूसरी बार चुनिया गया मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश रा योगी आदित्यनाथ।
0: ओळख लिया गुरु गोरखनाथ जी रे पीठ रहे और कह नहीं आगे आगे गोरख जागे।
1: हाँ।
0: और योगी आदित्यनाथ जी है जो को कह नहीं कि हंगो पहला मोटियार बड़े में ही है जो को है सांसद एमपी बन गया।
1: हाँ।
0: और राजकाज कह नहीं यूपी रो हमारे है।
1: अरे नवलोबा मैं गोरखपुर लोकसभा सीट में लगातार 5 बार सांसद चुनी गया था।
0: अरे भाई देखे कि मिनकारो भलो करी गए।
1: हाँ।
0: अरे तो योगी है।
1: हाँ।
0: तो साधु सन्यासी है।
1: हाँ।
0: तो लोग कह नहीं कि भाई देखे कामड़ो हावड़ हिसाब करे तो लोग अभी क्या क्या 10 बार सुन ले ठीक है नहीं तो क्या उसमें क्या ये तो नहीं बदई है और हज को हाजत आजा रहे भगवान ने हाजत आजा रखे और बहुत बहुत बधाई है भाई शुभकामनाएं है बड़े
1: बड़े नवलोबा। आज जन्मदिन है रमेश कृष्णन जी रो। मैं अपने भारत रा महान दिग्गज पूर्व टेनिस खिलाड़ी होता
0: नवलोबा। ठीक ठीक हो ए भाई देख कोई पर जरूर है जो जग जाओ खेल है
1: नवलोबा वो यू खेली जाए। देखो बैट लियोड़ो हुए हाथ में और अपने एक मोटो नेट हुए बीच में और दोनों पासे अलग अलग खिलाड़ी खड़े हुए बॉल खेले नवलोबा
0: कूद कूद ना हो हम
1: देख
0: मैं एक दो कोई मात पर मिन का नट गया जब मैं उठे है जो खेल कूद करता।
1: हाँ।
0: तो अन्न कहीं है जो भाई बधाई देनी है।
1: हाँ नवलोबा
0: हाँ तो भगवान आने हजरत हजरा के चौका खेल खेलता रहे।
1: है नवलोबा आने अपनी सरकार पद्मश्री भी सम्मानित करे।
0: हाँ, तो चौका खेल करिया जिद कह नहीं है बात बड़े
1: बड़े नवलोबा। आज जन्मदिन है महाकवि मलयालम साहित्य रमान कवि होया निबंधकार होया साहित्यकार भी रहा था जी शंकर कुरुप।
0: ओ ठीक है कुरूप है जो मैं केंद्र में हो गया
1: है नवलोबा सब पहलो ज्ञानपीठ पुरस्कार आने सम आने सम्मानित।
0: हाँ तो देखे भाई गुणी विद्वान मिनखा और मिनखा बात है कोई चांदनो करियो के क्या भाई जसरा दिया वे।
1: हाँ।
0: और क्या है जिको ज्ञान रा दिया वे बे है जिको जद झुपे नहीं पहन बात वे तो आने कह नहीं है मलयालम में लिखो चाहे मारवाड़ी में लिखो।
1: हाँ।
0: लिखी हो जिते कह नहीं भंडार भरियो तो आने कोटी कोटी नमन है
1: और
0: मंदड़ेरा फूल चढ़ाओ देखा कितुरी। हाँ? कि भले कोई वेद बता नहीं तो हूँ एक गीत सुनाऊ
1: क्यों गीत
0: अरे मारकर है एक बड़ी है जिको बढ़िया चौको के देखे कुदरत ने हूँ तो कहूँ है कुदरत ने हो चाहू क्या इतना जीव जिन्ना और बनावे पंख पंखेरू बनावे मिन्न काने है जिको कह नहीं बनावे बे है बे रे कटे बात हूँ घने है जिको माड़ा फेर फेर दाब को पण आज तक मन मिलिया कोन
1: यो
0: और गीत तो हुनु नहीं।
1: हाँ।
0: जद मारे एक

0: अच्छी बात है।
1: कौन चित्रकार है?
0: गीत तो हाचो है ना।
1: बच्चे बात करे, हमें आगे बदो।
0: हमें आज जन्मदिन है अपने भारत रा महान कार्य सामाजिक कार्यकर्ता स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय श्रमिक आंदोलन रा जनक NM जोशी जी रो।
1: ओ ठीक ठीक जोशी जी यानी
0: ए मजदूरा रे अधिकार वास्ते लड़िया था नवलोबा।
1: हाँ।
0: और समाज रे कल्याण वास्ते के समाज सुधार वास्ते आपरो जीवन समर्पित।
1: अरे भाई देखे कई बिरला मिनक वे।
0: हाँ।
1: जो किसान मजदूर कहनी हक कुदरी है जो कहनी आवाज बुलंद करे।
0: हाँ।
1: और एड़ा बिरला मिनक है जिको कहनी कुदरती आप रे कह भाई मसीहा होया करे।

0: नहीं है जो को भाई दे के कोटि कोटि नमन है और मंदड़ेरा फूल चढ़ावा पर बाते पोर धोक देवा भले
1: भले नवलो बा आज अबे पुण्य तिथि जिनारी है बाने याद करा आज वेद मारवा नामरा जाबाज आईपीएस ऑफिसर होता नवलो बा
0: वेद मारवा हा
1: हाँ और ए तीन राज्य रा पूर्व राज्यपाल भी रिया था ना
0: अरे रिया भाई ने आपरी टाइम मत कहो है भर्ती

0: अपनी टाइम माते कहो है कि वर्दी में हानी
1: हाँ।
0: जो तो कह नहीं कि अपराधी हान जिका कोई कह नहीं गलत काम करता
1: हाँ।
0: बे दूसरा और नाम हूँ
1: बात अच्छी है
0: समझिया
1: हाँ।
0: कह बिरला मैंने की सौ का काम कर गया तो आनी कोई नहीं भूल सके कोटि कोटि नमन है आन मंदेरा फूल सदा वहाँ पड़े
1: बड़े नवलोबा आज पुण्यतिथि है मास्टर मदान जीरी ए नवलोबा होया था संगीत इतिहास रह कहनी असाधारण बाल प्रतिभा मतलब बचपन में ही इतना प्रतिभावान ना के शास्त्रीय गीत कहीं हुई या गजल कहीं हुई सब गाय लेता
0: ना ओ टाबर बने में
1: हाँ
0: ओ पूतरा पग पालने में दिग्गान चौके कहनी गायन बादन करियो
1: पर नवलोबा आनो जी को निधन हो 14 वर्ष री आयु में ही
0: अरे हो जा भाई जगह के कुदरत रा खेल है
1: हाँ।
0: कोई हर जी को कम उम्र में अड़ा अड़ा काम कर जा जी को
1: हाँ, नाम कर
0: देखो हो बराड़ो नहीं कर सके
1: अच्छी बात है
0: तो कुदरत रा करिश्मा है इनके है जी को बात कुदरत री है तो भाई यही है जी को जिको काम करन गया नहीं भाई टाबर बना नहीं कर दियो बे है जी को कह नहीं दृष्टान मोटा है आने कोटि कोटि नमन है मंदड़े रा फूल चढ़ाओ
1: बड़े
0: बड़े
1: नवलोबा
0: वाह बड़े बड़े मैं मारी बात सुन की तुरी हूं कहूं जी को हूं ले पर कान खोलन
1: काई काई है धड़कन केवन रो में
0: क्यों ना मार के को नहीं मैं कहीं हाँ भी हूँ जो
1: नहीं तो ते कहीं जाओ आज
0: अरे भाई
1: जिनारी वाणो नाम तो लेवन दो पूरा पहली
0: कौन है बड़ा कोई
1: आज कुबेरनाथ राय जी भी पुण्यतिथि है बे हिंदी साहित्य रा बंदकार विद्वान और सांस्कृतिक चिंतक
0: ओ गुड़ी विद्वान मैंने कहा
1: हाँ।
0: आप रा काम पोतिया लिखन गया हम जान गया तो कोटि कोटि नमन है हमें बात है भाई मने गर्जी सी होना
1: वजन ठीक है
2: हर जी सुन बिनती थे आई जो रामा पीर राजा विजय सिंह परचो मांगे।

0: पाकिस्तान बार नियाल कर दिया थे तो कह नहीं के धरती माते अवतार मानी जो है
1: नहीं
0: थारा जेड़ा तो कह नहीं भाई कह नहीं झंडा ऊंचा कर थारा जेड़ा है
1: हमार फटीड़ा देव जेड़ा
0: अरे को मुका वहां फटीड़ा दू भाई मारे नहीं भाई है तो आज काल एडो कह नहीं कि नहीं तू ही नहीं कू मैं एक बात जरूर कू देखे चौमा दिन है साढ़ी महीनो है तपत घनी है तो बहुता मत फिर जो और कोई
1: आजकल तो नवलोबाग इतनी मतलब तावड़ो तेज पड़ रही कि नहीं बतलाओ तो मायने पड़े हैं
0: अरे बड़ मैं तो क्यों बतलाओ
1: नहीं बतलाओ
0: जरूर बाहर ही नहीं निकलना
1: निकला
0: ही जो कोई कह नहीं काम अपर हुड़ अपाड़ो है
1: नवलोबाग घर में एसी लगवाए तो मैं बाहर ही कौन
0: हाँ सही सही लगवाऊ भाई हमके अपर जमन उसको कोई नहीं जब अपर हैंग लिया हूँ ठीक है
1: यो
0: हमें देख हुड़ अपाड़ मारते जंजर के करनो है भाड़ कांटो ही कर लो
1: अरे पौधा ही
0: लगाना तभी यही कटानी देखे के पंख पंखेरू है अरे है जो कुंडिया भरनी
1: सब कर दे
0: जाओ डंड खेलिया भरनी
1: पड़े
0: ए पुंदरा काम करो है बात भली हुई ना भाई देखे रसोड़े में आप पधारो नहीं तो हूँ दू धक्को था ने उगा दू धक्को दे
1: क्यों
0: मैं जान बढ़िया है जो जिमनी है तैयार करो
1: जिमन वास्ते दकर जरूर
0: ए देखो खीरा खीरा ही जी
1: खीरा
0: अरे अरे भाई और आयो क्या इन रोटी रामेश्वर जी थोड़ी भेड़ी कर दी भाई हो
1: यो
0: हाँ हम देखे तारा ऊंचा आई गया हूँ है जो माड़ा फेर लू जीते थे रसोड़ो कर दो तैयार और मैं देखे दिन बदगोन प्रोग्राम टाइम हो गो पूरो भाई छेड़ो ले वही राम राम, राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।
1: या तो बर्बाद कर दो।
0: प्रीतम और अरिजीत की आवाज में ये गीत लूडो फिल्म से है।

आइए सुनते हैं अगला गीत रोजा फिल्म से। गीत के बोल है पी के मिश्रा के, संगीत है ए आर रहमान का और आवाज़ दी है एस पी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा सिंह ने।

बादल फिल्म से ही गीत अनुराधा पौडवाल, सुखविंदर सिंह, जसप्रीत नरूला और अनमोल मलिक की आवाज़ में, गीत के बोले समीर के और संगीत अनु मलिक का।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले समाचार संध्या और फिर न्यूज एट 9 रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
2: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए

0: विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
0: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है

0: उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट दिए जाएंगे।
1: गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमरीका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
3: The negotiating team which came from
4: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमरीकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
3: ट्रेड अग्रीमेंट फॉरवर्ड।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
3: With Nepal we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
1: विदेश मंत्री

0: पी सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुग्यानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुग्यानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मॉनसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects in Gujarat and Daman. Prime Minister emphasizes on self-reliance in energy sector, says India actively leading towards green future by balancing economic growth and ecological preservation. Country's GDP growth rate estimated at 7.7% in 2025-26 following strong momentum by the economy. Home Minister Amit Shah says smart border project in its final execution stage, pilot rollout to be introduced next year at sensitive border locations. Southwest monsoon advances further into more parts of Arabian Sea, Goa and Karnataka. And in hockey, India enter final of men's under 18 Asia Cup, beating Pakistan 5-3 in semi-final at Kakamigahara in Japan.

0: And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. Addressing a large gathering after launching various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat today, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial one-fifth of the nation's green energy share. He said the current global energy crisis highlights the critical importance of self-reliance in energy. He said the world is gradually progressing towards a greener future and India is actively contributing to this transition.
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
0: Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city.
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी, साथ ही यहां सूरत मेट्रो का भी विस्तार हो रहा है। ये सारे कदम हरित शहर के रूप में सूरत की पहचान को और सशक्त करेंगे।
0: After reaching Surat this afternoon, the Prime Minister first visited Hazira and reviewed the ongoing industrial and infrastructure operations. Later in the evening, Mr. Modi launched various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. These projects include major healthcare and aviation infrastructure.
1: आज भी यहाँ कनेक्टिविटी, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसे जुड़ी अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। विकास के ये काम दमन और पूरी यूनियन टेरिटरी के लिए यहाँ के लोगों के जीवन को आसान बनाएंगे। इनसे युवाओं के लिए नए अवसर तैयार होंगे।
0: Prime Minister Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a robust 7.7% growth in the fiscal year 2025-26 despite a global economic crisis.
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: India's economy has maintained a strong momentum in 2025-26 with real gross domestic product GDP estimated to grow by 7.7% in comparison to 7.1% in 2024-25. The Ministry of Statistics and Programme Implementation today released the provisional estimates of annual GDP for the financial year 2025-26 and quarterly estimates of January to March this year. It said the primary sector has observed 3.2% growth rate, mainly driven by the performance of agriculture and fisheries sectors. Addressing a press conference in New Delhi today, Secretary, Ministry of Statistics and Programme Implementation Saurabh Garg said gross fixed capital formation recorded a robust growth of 8.2% in 2025-26.
2: Gross fixed capital formation, which represents the investment in the economy, that has been remarkable 8.2% in 25-26, increasing from 6.4% in 24-25. And gross fixed capital formation indicates that perhaps future growth should also be robust because it signifies the investment in the economy.
0: Speaking on the occasion, Chief Economic Advisor Dr. V. Anant Nageshwaran said the government has taken several proactive measures to maintain macroeconomic stability amid global uncertainties.
3: We are obviously very pleased.

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम आरंभ करते हैं 36 चाइनाटाउन फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है हिमेश रेशमिया ने। गीत के बोल है समीर के और संगीत है हिमेश का।

अगला गीत रॉकस्टार फिल्म से एआर रहमान, जावेद अली और मोहित चौहान की आवाज़ों में। गीत की बोल है इरशाद कामिल के और संगीत है एआर रहमान का।

आइए सुनते हैं अब अगला गीत सिंघम फिल्म से कुणाल गांजावाला और ऋचा शर्मा की आवाज़ में। गीत के बोल है स्वानंद किरकिरे के और संगीत है अजय अतुल का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के ईमेल और पत्रों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम मनचाहे गीत।

नमस्कार श्रोताओ, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत में। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त विराट लखारा। मनचाहे गीत एक ऐसा संगीत सफर है जहां हर गीत किसी की भावना से जुड़ा है, हर धुन किसी की यादों को छूता है और हर फरमाइश दिल से निकलकर दिल तक पहुंचती है। अगले एक घंटे तक हम साथ मिलकर सुनेंगे आपके पसंदीदा नगमे, आपकी भेजी हुई फरमाइशें और संगीत की वो मधुर दुनिया जो हर पल को खास बना देती है। तो आइए जानते हैं हमारी पहली फरमाइश किसने भेजी है। हमें पहली फरमाइश मिली है भोपालगढ़ राजस्थान से। फरमाइश भेजने वाले हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परियार। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, अगली फरमाइश हमें मिली है जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से। अशोक, अर्चना, अनुज, आयुषी और रमेश चंद्र वर्मा की। साथ ही में फरमाइश भेजी है सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप ने। अगली फरमाइश हमें मिली है गांव होडू जिला बालोतरा से उम्मीदाराम, सुरेश कुमार, सुरतेश कुदारा और मदन चौधरी की। हमारे अगले फरमाइश करता है हॉली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन, अमन, दीपांशु खोरवाल। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, आइए जानते हैं हमारे अगले फरमाइशकर्ता के बारे में। अब मैं अगली फरमाइश मिली है माल्यान सरधना मेरठ से, अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, दिव्यम जैन की।

इसी के बाद हमें अगली फरमाइश भेजी है शिवाजी नगर वडाली देशमुख से राजेश शिवसागर और इंदिरताई खोबर केड़े ने। हमारे अगले फरमाइश करता है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल राजदीप राजेश राशि और श्रीमती शीतिल राजेश की। आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश का ये गीत।

दोस्तों, हमारे ईमेल पर एक और फरमाइश आई है। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा और कार्तिक आर्यन वर्मा की। आपकी इस खूबसूरत फरमाइश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पेश है आपका पसंदीदा गीत सिर्फ आपके लिए मन चाहे गीत में।

आप सुन रहे हैं मनचाहे गीत, जहां आपकी पसंद बनती है हमारी प्रस्तुति। संगीत की ये महफिल अभी जारी है और अब एक और गीत जो शायद आपकी यादों के किसी खूबसूरत कोने को फिर से रोशन कर दे। आइए जानते हैं हमारी अगली फरमाइश के बारे में। हमें अगली फरमाइश मिली है पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से। सुदर्शन, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह की। हमारे अगले फरमाइश करता है सादुल शहर जिला श्री गंगानगर से, राम कुमार रेवाड़, चंद्रकुला रेवाड़। गांव नथाना पंजाब से हमें अगली फरमाइश भेजी है अर्जिंदर छिंदा, जसवीर

दोस्तों, हमें अगली ईमेल फरमाइश मिली है यवतमाल महाराष्ट्र से संतोष और विनोद खटसे की। अगली फरमाइश हमें करी है संबलपुर कांकेर से फागुराम, ज्योति और ओजस्वी यादव ने। अगली फरमाइश हमें मिली है निमनाबाद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर एवं करमजीत कौर की। हमारे अगले फरमाइश करता है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज, मीना, योगेश, मैंडी, सौरभ, साइना और निवान शर्मा। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का अगला गीत।

दोस्तों, कई बार हम जो बातें शब्दों में नहीं कह पाते वह एक गीत कह जाता है। शायद इसी वजह से संगीत को भावनाओं की भाषा कहते हैं। आइए जानते हैं हमारे अगले फरमाइशकर्ता के बारे में। अगली फरमाइश हमें मिली है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला और कुमकुम सुरलकर की। हमारे अगले फरमाइश करता है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, तुलसी मस्कीन बिना मस्कीन। अगली फरमाइश हमें मिली है चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और कैशुरुदान खुराना की। हमारे अगले फरमाइश करता है एयरपोर्ट रोड बंदा नगर इंदौर से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश कार्तिक और परी खर्चे। अगली ईमेल फरमाइशी ईमेल हमें मिली है मेरठ कैंट से तिग्दर्शन और कविता कॉड की। अगली फरमाइशी ईमेल हमें प्राप्त हुई है सौराष्ट्र राजकोट से जूली, जगदीश, कंचन, कुसुम, प्राचीर और प्रवीण की। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओ आइए जानते हैं हमारी अगली फरमाइश के बारे में। हमें अगली फरमाइश मिली है गुजरात गांधीधाम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश चौरी की। हमारे अगले फरमाइश करता है जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। हमारे अगले फरमाइश करता है ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश, पूनम, ज्योति और शिवांश सर वर्मा।

अगली फरमाइश हमें मिली है सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान मोहिनी कल्पित गर्वी हिमांश चौहान की। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, हमारे अगले फरमाइश करता है अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, जयपाल यादव। अगली फरमाइश हमें मिली है मुल्लापुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन और शुभ चंद्र की। इसी के बाद हमें अगली फरमाइशी ईमेल भेजी है कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे, प्रशांत राजे, संजीव कुमार, प्रथमेश, प्रणाली, सर्वत, सानवी।

अगली फरमाइश ईमेल हमें मिली है पदमपुर जिला श्री गंगानगर से मेहर ममता कीर्ति और भूमिका अरोड़ा की। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, अगली फरमाइशी ईमेल हमें भेजी है मुजफ्फरनगर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार ने। जलालाबाद से हमें अगली फरमाइशी ईमेल प्राप्त हुई है सुरेश, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित कगनीजा की।

रामगढ़ कैंट से हमें अगली फरमाइश भेजी है महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब ने। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, मनचाहे गीत कार्यक्रम का सफर अब यहीं तक। अब मुझे यानी विराट लखारा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन चाहे गीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025

2026 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।